जिस हिम्मत सुख होए कणा, दुख दर्द ना मुँह ले होए, सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहेब सच्चा सोए, साध संगत होए निर्मला कटिए जम की फास, सुखदाता पै पंजनो इस आगे कर।

गुरपूरा आराध नित एक सकी लिव लाग अरहाओ इको भाई मित एक इको मात पिता एक सकी मन टेक है जिन जियो पिंड दिता हो प्रमणो ना विसर जिन सब के

बिन सच्चे सब कूड़ है, अंते हुए विनाश हरहाओ। साहिब मेरा निर्मल तिस बिन रहन ना जाए, मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए। चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर ना जाए, इस आगे अरदास कर जो मिले करतार। तल गुरदाता नाम का पूरा जिस पंडा।

पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार सत संतोख दया कमावे एक करणी सार आव छोड़ सब होए एना जे दे प्रभ निरंकार जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवा दुकृत सुकृत मंदे संसार सगलाना धूते रहत भगत है कोई विरला जाना ठाकुर सर्वे समाना क्या को सुनो स्वामी तू वड़ पुरख सो जाना रखाओ मान अवमान मंदे सो सेवक नाही तत्समदर्शी संतो कोई कोड़ मंदागी तैन

के गुण गाओ, सच खाना सच पहनना, सच्चे सच्चा नाओ, साध ग्रास ना विसर, सबल मूर्त गुरे आप, गुर जेवड अवर ना दिसई, आड़ पैर थे जाप, नदर करे ता पाई है, सच नाम गुण तास, गुर परमेश्वर एक है, सब में रहया सुमाए, जिनको पूर्व लिखया, सेई नाम त्याय, नानक गुर शरणागति, मरे न आवे जाए, एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, श्री राग महल्ला पहला, कार पहला, अष्टपदियां, आख आगमन वामना, ज्यो ज्यो जापे वाए, जिस नूं वाए सुनाईए, सो केवट कितताए, आखण वाले जेतड़े, सब आख रहे लिवलाए, बाबा अल्लो अगम अपार, पाकी नाई पागताए, सच्चा परवदगार, अरहाओ, तेरा हुक्म न जापी केतड़ा, लिखना जाने कोए, जे सो सार मिलिए, तिल ना पुजावे रोए, कीमत किन ना पाईया, सब सुन सुन आखे सोए, पीर पे कंबर सालक साधक, सोद और शहीद, शेख मसाइक काजी मुल्ला, दर दरवेश रसीद, बरकत तिनको अगली, पढ़ दे रहन दरूद, पुछ न साजे पुछ न टाहे, पुछ न दे वेले, अपनी कुदरत आपे जाने, आपे करण करे, सब ना वेखे नदर कर, जय पावे तय दे, थावा नाम ना जानिए, नावा केवड़ नाओ, जिते वसे मेरा पातशाह हो, तो केवड़ गताओ, अंबड़ कोई न सकई, हों किसनु पुछन जाओ, वरना वरना पावनी, जे किसे वड़ा करे, वड़े हत वड़े आईया, जय पावे तय दे, हुक्म

मैल नाही निर्मल जल नहाए, निर्मल साचा एक तू और मैल परी सब जाए। अरहाओ हरका मंदिर सोना किया करने हार, रसा दीप अनूप जोत तेर पवन जोत पार, हाड पटनगढ़ कोचड़ी स सौदा व्यापार, ज्ञान अंजन पै पंजना देख नरंजन पाए, गोबत प्रट सब जानिए ये मन रखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे लय मिलाए, कस कस वट्टी लाई है परखे हित चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए, आस अंदेसा दूर कर यूं मल जाए सुमाए, सुख को मांगे सबको दुख न मांगे कोए, सुखे को दुख अगला मन मुख बूझ न होए, सुख दुख समकर जानिए शब्द ते सुख होए, वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधक नाम रते गुणतास, सब दरते से जिन गए हाऊ सब बलिहारे जास, चौदुख मैले मल भरे जिन मुख नाम न होए, भक्ति पाए विगुणिया मुख काला पद खोए, जिन्नी नाम सारिया अवगुण मुठी रोए, खोजत खोजत पाया

रहे सुहाग भाई रे अबर नहीं मैं ताओ मैं तन्नाम निधान है गुरदिया बल जाओ अरहाओ गुरमत पात साबात तिस तिसके संग मिलाओ जिबन कड़ी ना जीवो बिन ना वे मर जाओ मैं अंदले नाम ना विसर एक टिकी कर जाओ गुरु जिना का अंदला किले ना गीटाओ बिन सतगुर नाओ ना पाईए बिन नावे कैसाओ आए गया पछतावन जो सुन्ये कर काओ बिन नावे दुख दिहोरी जो कलर की पीत तब लग मैल ना पाईए जावलग साच ना चीत शब्द रपे कर बाईए निर्वाणी पद नीत हाँ गुर पूछो अपने गुर पुछकार कमाओ शब्द सलाह की मानवसे हाँ में दुख जल जाओ सहजे होए मिलावड़ा साचे सच मिलाओ सब दरते से निर्मल तक काम क्रोध अहंकार नाम सलाहन सत सदा हर रखे और तार सो क्यों मनो मसारी है सब जिया का आधार सब मरे सो मर गए

वारो वार सब सलाए आपको वडो वडेरी होए। गुरबिन आप ना चीनिए कह सुने क्या होए, नानक शब्द पछाणिए होमे करे न कोए। श्री राग महला पहला बिन पिर तन सी गारिये, जो बन बाद खुआर ना माने सुख सेजड़ी। बिन पिर बाद सीगार दू कणो दोहागणी, ना कर सेज पतार मान रे राम जपो सुख होए। बिन गुर प्रेम न पाईए शब्द मिले रंग होए, हरहाओ पुर सेवा सुख पाईए हर वर सह सीगार। सच माने पिर सेजड़ी गूड़ा हेत प्यार, गुरमुख जान स जानिए पुर मिली गुण चार। सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए, मन तन साज बगसया कीमत कहन न जाए। हर वर कर सुहागणी निर्मल सच नाए, मन में मनुआ जे मरे ता तिर रावे नार। एक तागे रा मिले काल मोतियन का हार, संत सभा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार। खिन में उपजे खिन खपे खिन आवे खिन जाए, शब्द पछाणे रब रखे ना ते काल संताए। साहेब अतुल ना तोलिए कस न पाया जाए, वापारी वणजारिया आए वजो लखाए। तारक मावे सच की लाहा मिले रजाए, पूंजी साची गुर मिले ना तिस तिल ना तुमाए। गुरमुख तोल तुलाए सी सच तरह जी तोल, आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल। आप तलाए तोल सी पूरे पूरा तोल, कतने कहन ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार। काया सोच ना पाई है बिन

रय बक्से पवित पंडार अरहाओ रे मन ऐसी हर्षो प्रीत कर जैसी मछली नीर यो अल को तो सो कणो मन तन सांत शरीर व्यंजल कड़ी न जीवई प्रभ जाने अव पीर रे मन ऐसी हर्षो प्रीत कर जैसी चातक मेह सर पर थल हरी आवले एक बूंद न पवी के कर्म मिले सो पाईए किरत पया सिर देहे अरे मन ऐसी हर्षो प्रीत कर जैसी जल दुध होए आवटने आपे खवे दुध को खपन ना दे आपे मेल सुनिया सच वडियाई दे अरे मन ऐसी हर्षो प्रीत कर जैसी चकवी सूर खेन पल नींद न सोवई जाने दूर हजूर मनमु सोजी ना पवे गुरमु सदा हजूर मनमुख गणत गणामणी करता करे सोहोए ताकि कीमत ना पवे जे लोचे सब कोए गुरमत होए ता पाईए सच मिले सुख होए सच्चा रहो न टुटे जे सरगुर पेटे सोए ज्ञान पदार्थ पाईए तेर पवन सोजी होए निर्मल नाम ना विसरे जे गुण का घाक होए खेल गए से पंखणु जो चुगदे सर तल कड़ी के मोद के चलना खेल अज के कल जे तू मिले सो मिले जाए सच्चा पिड़ मल बिन गुर प्रीत न उपजे पौमे मैल न जाए सो हंग आ पछाणिए शब्द भेद पतियाए गुरमुख आ पछाणिए अवर के करे कराए मिलिया का क्या मेलिए शब्द मिले पतियाए मनमुख सोजी ना पवे विछड़ चोटा काए नानक दर कर

राम नाम मन विद्या गुरदिया सदान मन बुद्धि केतिया केते वेद विचार केते बंधन जी के गुरमुख मोख द्वार सचो ओरे सबको ऊपर सच आचार सबको ऊंचा आखिए नीच न दिसे कोए एक ने पांडे साजे एक चानन क्यों लोए कर मिले सच पाइए दुर्बख्श ना मेटे कोए साध मिले साधु जने संतोख वसे गुर पाए अकथ कथा विचारिये ये सदगुरु महे सुमाए ई अमृत संतोखया दर गए पैदा जाए काड़ कड़वाजे किंगुरी अन दिन शब्द सुखाए विरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए नानक नाम ना विसरे चूटे शब्द कुमाए श्री राग महला पहला चित्ते दिसे तौल हर बगे बंक द्वार कर मन खुशी उजारिया

तन निर्मलो गुरदाद करे प्रसोय हराओ राम नाम तन निर्मलो जे देवे दे मुनहार आगे पूछना हो वही जे बेली कुर करतार आप चिड़ाए छुट्टिए आपे बख्शन हार मन गुजाने अपने धियां पूत संयोग नारी देख विगासीए

आई है, सब दे सच समाए, माया पूले सिद्ध फिरे, समाध ना लगे सो पाए, तीने लो व्याप्त है, हल करगी लपटाए, बिन गुर मुक्त ना पाई है, ना दुबदा माया जाए, माया किसनु आखी है, क्या माया कर्म कमाए, तो सुख ए जो बद है, हम में कर्म कमाए, बिन शब्दे परम ना चूकई, ना विचों हम में जाए, बिन प्रीति भगत ना होवई, बिन शब्दे थाए ना पाए, शब्दे हम में मारिए, माया का प्रम जाए, नाम पदार्थ पाइए, गुरमुख सहज सुपाए, बिन गुर गुण ना जापनी, बिन गुण भगत ना होए, भगत वछल हर मन मसया, सहज मिलया प्रसोए, नानक शब्दे हरसा लाइए, कर्म प्राप्त होए, श्री राग महला तीजा, माया मोह मेरे प्रभु कीना, अपे परम पुलाए, मनम कर्म करे नहीं बूझे, बिरथा जन्म गवाए, गुरबाणी असी जग में चानन, कर्म वसे मन आए।

सतगुर मिले फेर ना पवे, जन्म मरण दुख जाए, ऊरे शब्द सब सोझी होई, हर नामे रहे सुमाए, मन मेरे सतगुर से चित लाए, निर्मल नाम सद नव तनो आप वसे मन आए, अरहाओ हर जू रखो अपनी सरनाई, क्यों रखे त्यों रहना, कुर के शब्द जीवित मरे, गुरमुख पवजल तरना, वडे भाग नाव पाईए, गुरमत शब्द सुहाई, आपे मन मसिया प्रव करता, तैजे रहा सुमाई, एक ना मनमुख शब्द न पावे, बंधन बंद पवाया, लख चौरासी फिर आवे, बिरथा जन्म गवाया, भगता मन आनंद है, सच्चे शब्द रंग राते, अनदिन गुण गावे सद निर्मल, सहजे नाम सुवाते, गुरमुख अमृत बाणी बोल है, तब आत्म राम पछाणी, एक कोसे मन एक अरध है, गुरमुख अकथ कहानी, सच्चा साहिब सेवी है, गुरमुख वस्ते मन आए, सदा रंग राते सच स्यों,

तो संसार उपाया सिरे सिर तंदे लाया वेख कीता अपना तर कुदरत पासा टाल जियो प्रगट पहारे जापदा सब नावे नू परतापदा सतगुर बाज ना पायो ता मोही माया जाल दियो सतगुर कौ पल जाइए जित मिले परमगत पाइए सुर नर मुंदन लोच दे तो सतगुर दिया बुझाए जियो सतसंगत कैसी जानिए जिथे एको नाम खानिए एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो क्यों जगत परम भुलाया आपो तुद खुवाया।

तेरे अंतर शब्द वसाया सईयां से सुहागनी जिन सई नाल प्यार जियो जिन्ना भाणे का रस आया तिन विचो परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो सतगुर मिले फल पाया तिन विचो ऐ करण चुकाया दुरमत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय सुमाणिया सुख सेवा अंदर रखे अपनी नदर तरे निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिले नाम खाणिए सतगुर बाज ना पायो तो तक की कर्म कमाए जियो हों सतगुर विटों कुमाया जेन प्रफुल्ला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लय रलाए जियो तू सबना माए सुमाया तिन करते आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जा को जोत तरी करतार जियो आपे खसम निवाजया जियो पिंड दे साजया अपने सेवक की पैज रखिया तुए कर्म मस्तक तार जियो सब संजम रहे सियाणपा मेरा प्रभ सब कुछ जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोग करे जयकार जियो मेरे गुण अवगुण ना विचारिया प्रभ अपना बिरद सुमारिया कंठ लाए कै रखियोन लगे न तत्ती वाओ जियो मैं मंतन प्रभु त्याया जिये इछेड़ा फल पाया सा पासा सिर खसम तू जप नानक जीवे नाओ जियो तुद आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सचो सच वरतदा जिस भावे तिसे बुझाए जियो गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चुकाया।

तान चितवै तान संचय बन जा रहा मित्र। हर नामा हर ना सुमाल, हर नामा हर घर कदे ना सुमाले, जे होवे अंत सुखाई। क्यों तन संपे माया झूठी, अंत छोड़ चलिया पछताई। जिसनु कृपा करे गुरु मिले सो हर हर नाम सुमाल। कहो तो नानक तीजे पैरे प्राणी, से जाय मिले हर नाल। चौथे पैरे रहन के वन जा रहा मित्र, हर चलन वेला आंदी। कर सेवो पूरा सतगुरु बन जा रहा मित्र, सब चली रहन वेखांदी। हर सेवो खिन खिन टिल मूल ना करे हो, चित अस्थिर जुग जुग हो वो। हर सेती सदमान हो रलिया, जन्म मरण दुख खोवो। गुर सतगुरु स्वामी भेद ना जानो, जित मिल हर भगत सुखांदी। को नानक प्राणी चौथे पैर, सफल हो रहन भगतां दी। श्री राग महला पंजवा, पहले पैरे रहन केवन जा रहा मित्र। तार पाए ता उधरे माघे, दसी मासी मानस किया बन जा रहा मित्र। तर मोलत कर्म कमाघे, मोलत कर दी नी कर्म कमाने। जैसा लिखत तुर पाया, मात पिता भाई सुध बनता, तिन पीतर प्रभु संजोया। कर्म सुकर्म कराए आपे, इस जनते वस किश नाहे। कहो नानक प्राणी पहले पैरे, तर पाए ता उधरे माघे। दूजे पैरे रहन के बन जा रहा मित्र, पर जवानी लहरी दे। बुरा भला ना पछाणी बन जा रहा मित्र, मन मत्ता अंग में। बुरा भला ना पछाणे प्राणी, आगे पंथ करारा। पूरा सतगुर कभू ना सेवया, सिर ठांडे जम जंदारा। धर्म राय जब पकड़ सबरे, तब क्या जवाब करे। कहो नानक दूजे पैरे प्राणी, पर जोबन लहरी दे। तीजे पैरे रहन के बन जा रहा मित्र, बिग संचे अंध अज्ञान। पुत्र कलत्र मोह लपटिया बन जा रहा मित्र। अंतर लहर लोभान, अंतर लहर लोभान परानी। को प्रचित न आवे, साध संत सो संग न किया। बोजोनी दुख पावे, सिरजनहार वसारिया स्वामी। एक निमख न लगो ध्यान, को नानक प्राणी तीजे पैरे, बिग संचे अंध अज्ञान। चौथे पैरे रहन के बन जा रहा मित्र, तिन नेड़े आया सोए। गुरमुख ना सुमाल तू बन जा।

करे, गुरमुख सौरड़े कम सिखे, सौरड़े कम सिखे गुरमुख हर घर सदा त्याए, सईयां विच फिरे सुहेली हर दरगे बाल उड़ाए, लेखा धर्म राय की बाकी जप हर घर नाम त्रिखे, मुंद इयाणी पेयड़े गुरमुख हर दर्शन दिखे, वी आओ हुआ मेरे बाबला गुरमुखे घर पाया, अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान प्रचंड बुलाया, बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिरसिया हरवन पदार्थ लादा, हो मैं रोग गया दुख लाता आप आपे गुरमत खादा, अकाल मूर्त वर पाया अविनाशी नाम।

जो जुगे जुगो सद पीढ़ी गुरु चलन दी, जो जुग पीढ़ी चले सदगुर की, जिनी गुरमुख नाम ते आया, हर पुरख ना कभी बिनसते जावे, नित देवे चढ़े सुवाया, नानक संत संत हर एको, जप हर हर नाम सुगंधी, हर राम राम मेरे बाबला, फिर मिलतन वेल बधंदी, श्री राग महला पंजवा, शांत एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मन प्यारिया जीव मित्रा, गोविंद नाम सुमाले मन प्यारे जी मित्रा, हर निभ गए तेरे नाले, संग सगाई हर नाम त्याई,

शांत प्रेम ठगौरी पाए रिहाए गोविंद मन मोया जियो संतन कै प्रसाद आगाध कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दो सब जोया भगत लखेण तर वस पए मन सरसुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सा मिट गए सखी मंगलो गाया यश पुजाया बौड़ ना माया होया कर गए लीने नानक प्रप्यारे संसार सागर नहीं पोया डकना साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना पागम थागे से नानक हरंग मान दो।

लिख ले हो सदा साहिब के रंग रहे कहू न तूड़ स्नेहो कलम सजनी जाए सी लिखिया पी ना ले जाए नानक साहिब प्रीत ना जाए सी जो तुर छोडी सच्चे पाए मोहला तीजा नदरी आमदा नाल न चलई वेखो को व्यो पाए सतगुर सच दृढ़ाया सच रहो लिवलाए नानक सबदी सच है करमी पल्ले पाए पौड़ी हर अंतर बार एक तू तू जाने भेद जो कीते सो हर जानदा मेरे मन हर चेत सो डरे जे पाप कमांदा धर्मी विगसेत तू सच्चा आप न्याओ सच तां डरिए केत जिन्ना नानक सच पछाणिया से सच रलेत सलोक महला तीजा कलम जलो सण मसवाणीए तागद पीब जल जाओ लिखन वाला जल बलो जिन लिखिया दूजा पाओ नानक पूर्व लिखिया कमावना अवरण करना जाए महला तीजा होर कूड़ पढ़ना कूड़ बोलना माया नाल प्यार नानक विणनावे को सिर नहीं पढ़ पढ़ होए खुआर पौड़ी हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का

जननी जानत सुध बड़ा होत है, इतना को ना जाने, जे दिन दिन अवध कटत है, मोर मोर कर अटक लागत तार, पेगत ही जाम राव हसे, ऐसा तय जग परमलाया, कैसे बूझे जा मोया गय माया रखाओ, कैद कबीर छोड़ बिखया रस, इत संगत ने चो मरना, रमैया जपो प्राणी, अंत जीवन बाणी, एन बेद पवसागर तरना, जत पावे तां लागे पाओ, परम पुलाव चों जाए, उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे, इत संगत ना ही मरना, हुं पछाण तां खसमें मिलना, रहाओ दूजा श्री राग त्रिलोचन का, माया मोह मन अग लड़ा प्राणी, जरा मरण पौ मिसर गया, कुटंब देख विसे कमला ज्यों, पर कर जोह है कपट नरा, दूड़ा आयोह जमह तना, तिन आगलड़े में रहन न जाए, कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीठला ले भाड़ी वलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाव, अनक अनक भोगराज बिसरे प्राणी, संसार सागर पे अमर पया, माया मूठा चेत सनाही, जन्म गवायो आलसिया, बिगम कोर पंथ चलना प्राणी, रवस तय ना प्रवेशन, माया मोह तब सर गया, जा तजियले संसारं, आज मेरे मन प्रगट पया है, पेखियले तमराओ, तय करदल करन महाबली, तिन आगलड़े मैं रहन न जाए, जे को मुंह उपदेश करत है, ता वण त्रिण रतड़ा नारायण, ऐ जी तू आपे सब के जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया, श्री राग भगत कबीर जियो का, अचरज एक सुनो रे पंडिया, आप किस कहन न जाई, छोड़ नाल गणक दर्बजन मोह, तिर पौन मेख लीलाई, राजा राम अनहद किंगुरी बाजे, जाकी दिष्ट नाद लिव लागे रखाओ, पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, तनक कलस एक पाया, समय तार चोया त निर्मल, रसमय रसन चोआया, ये जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कमन है राजा, ऐसे गण प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग रत, और दुनि सब परम पुलानी, मन राम रसायन माता।

सिमरत नाम दो सब लाते अंतर बाहर प्रसाते पय पो परम खोया गुरपूरे देखा सबनी जाई जियो प्रसमरत वड ऊचे पारा नौ दिना परे पंडारा आद अंत मत प्रसोई दूजा लवे न लाई जियो कर कृपा मेरे दीन दयाल जाग जाते साधर वाला देह दान नांग जन मांगे सदा सहर त्याई जियो माज महला पंजवा ऐथे तू है आगे आपे जी जंतर सब तेरे थापे तुद मन अवर न कोई करते मैं तर ओढ़ तुम्हारी जियो रसना जप जप जीवे स्वामी पार परम्पर अंतर जामी जिन सेवा तिन ही सो पाया तो जन्म न जुए हारी जियो नाम अवखद जिन जन तेरे पाया जन्म जन्म का रोग गवाया हर कीर्तन गावो दिन राती सबर ए है कारी जियो दृढ़ कर अपना दास सवारिया कड़ कड़ अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया एक सिविन होर दूजा नाही बाबा नानक ए मत सारी जियो माझ महला पंजवा मन तारता राम प्यारे सर्व दीजे अपना वारे आड़ पैर गोविंद गुण गाइये बिसर ना कोई सासा जियो सोई सजन मीत प्यारा राम नाम सा संग बिचारा साधु संग तरी जे सागर कटिये जमकी फासा जियो चार पदार्थ हर की सेवा पार जा जप लख पेवा काम क्रोध किल गुण कट पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग पैस प्राणी सा संग मिले सारंग पानी नानक ना वस्या अंतर प्रवान किस उदासा जियो माझ महला पनवा सिमरत नाम हृदय सो पाया हर कृपा भगती प्रटाया संत संग मिल हर हर जपया बिन से आलस रोगा जियो जाके गृह नवनिध हर पाई तिस मिलया से पुर कुमाई ज्ञान चन पूर्ण परमेसर प्रसवना गल्ला जोगा जियो खिन में था पुथा पुनहारा आप एकंती आप सारा लेप नहीं जग जीवन दाते दर्शन डिठे लहन में जो गाजियो अंचल लाए साब सिट तराई अपना नाओ आप जो पाई गुर बोध पाया कृपा ते नानक तुरसन जो गाजियो माझ महला पनवा सोई करना जे आप कराए जिथे रखे सा पली जाए सोई स्याणा सो पतवंता हुक्म लगे जिस मीठा जियो तब परोई इक धागे जे लाए ले सो चरणी लागे ऊंद कवल जिस होए प्रगासा तेन सर्म नरंजन डीठा जियो तेरी महिमा तू है जाने अपना या तू आप शाने होम लिखारी संतन तेरे जिन काम क्रोध लोभ पीठा जियो तू निर्वैर संत तेरे निर्मल जिन देखे सब उतरे कलमल नानक नाम त्याय ते जीवे बिरसा प्रभु तीठा जियो मां ज महला पंजवा झूठा मंगण जे कोई मांगे तिको मरते कड़ी न लागे पार ब्रह्म जो सद ही सेवे सो गुरमल ने चल कहना प्रेम भगत जिसके मन लागी गुण गावे आनंद नित जागी बां पकड़ ते स्वामी मिले जिसके मस्तक लहना चरण कामल भगता मन मुठे विण परमेश्वर सगले मुठे संत जना की तूड़त बांचे नाम सचे का गहना उठत बैठत हर हर गाईये जे सिमरत वर ने चल पाई है नानक को प्रभु हो दयाला तेरा कीता सहना राग माज अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद शब्द रंगाए हुक्म सवाए सच्ची दरगह मैल बुलाए।

प्रकाश हुआ जी अन दिन सरगुण गावनिया रखाओ तन मन खोजे ता ना ओ पाए तापत राखे ठाक रखाए गुर की बाणी अन दिन गावे सहजे भगत करावनिया इस काया अंदर वस्त असंखा।

असंत अनाड़ी कदे ना बूझै, कथनी करे तै माया नाल लूझै, अंध अग्ञानी कदे ना सीझै। इस जुग में राम नाम निस्तारा, विरला को पाए गुर शब्द विचारा, आप करै सगले कोल उधारा। इस कल युग में कर्म तर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई, नानक नाम

राम तोड बंधन माया धर के कमलाए नित हर गुण गावे हर नाम समाए रहाओ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजे अर्थ सब माया कह बंध कह डान ले कह नरपत मर जाया तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद कीते बहु पांत कर माया कहता ही जा लहा दे ता सुख मने टोटे मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यो करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनर साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे जन नानक हर हस तृप्तया फिर भूख न लागे गौड़ी बैरागण महला चौथा हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा जिन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा हों कुर्बानी गुरे अपने जिन विछड़िया मिलिया।

उपदे दियो हर नाम छिड़ावे तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुरु बोले ता विस्म हो जाए हम जैसे अपराधी अबर कोई राखे जैसे हम सतगुर राख लिए छिड़ाए तू गुरु पिता तू है गुरु माता तू गुरु बंधप मेरा सगा सगाए जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा सा विद तुम घर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता।

आओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम घर जानो मेरी अनदन नाम जपी सुख पाई निर्जीवा आस घर तेरी गौर सतगुर दाते पंथ बताया हर मिलिया आयपा मेरी अनदन अंध पया बड़भागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश करते सब वस गत गया।

आहे, हर जन घर घर नाम समान, दुख जन्म मरण पव खंडा आहे, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा आहे, हम गरीब मस्कीन प्रातेरे, हर राख राख वड वड्डा आहे, जन नानक नाम आधार टेक है, हर नाम में ही सुख मंडा आहे, गौड़ी पूर्वी मोहल्ला चौथा, इस गढ़ में हर राम राय है।

रे प्रीत राम राय की गुरमार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सगुर आगे जिन विछड़िया हर गल लाया। मेरे अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हिरदे नाल दिखाया। सहज आनंद पया मन मोर गुर आगे आ विचाया। हम अपराध पाप कीने सर दुटी चोर चुराया। आप नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाहद। गुरमत मनुआ गावे वड़भागी गुर दर्शन पाया। तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे रहाओ। हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे। हम मल मल धोवे पाप गुरु के जो हर हर कथा सुनावे। हिरदे गुरमत राम रसायन जे वा हर गुण गावे। मन रसक रसक हर रस आघाने फिर बोर ना पूख लगावे। कोई करे उपाप।

गुरमुख जिंदू जप नाम करम्मा मत माता मत जियो नाम करामा संतोख पिता कर गुर पुरख अजरमा वड़पागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो गोर हा रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो वड़पागी मिल सूड सुजानी जियो मेरा मन तनहा रंग पिन्ना आवो संतो मिल नाम जपाहा वे संगत नाम सदा ले लाहा जियो कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो मिल पूर्व लिखड़े तुर कर्मा तामन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर को केड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत बुठड़ा मिलिया हर राया जियो जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज मोहल्ला चौथा आओ सभी गुण कामन करीहा जियो मिल संत जना रंगमाणे रलिया जियो पुर दीप ज्ञान सदा मन बरिया जियो हर तुठे टोल टोल मिलिए जियो मेरे मंत्र प्रेम लगा कर ढोले जियो मैं मेले मित्र।

गौड़ी माज मोहल्ला चौथा चोजी मेरे गोविंदा चोजी मेरे प्यारिया हर प्रा मेरा चोजी जियो हर आपे कान उपायदा मेरे गोविंदा हर आपे गोपी खोजी जियो हर आपे सब कड़ फूकदा मेरे गोविंदा आपे रसिया फोगी जियो हर सो जानना भुली।

जियो, गुर सबदी पाई गए हर प्रीत मराओ जियो, वडभागी जपनाओ जियो, मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रव्यासा जियो, हर मेलो संत जियो, गोविंद प्रापासा जियो, गुरमत नाम सदा परगासा जियो, जन नानक पूरेड़ी मन आसा जियो, गौड़ी माज मगन ला चौथा, मेरा बिरगी नाम मिले ता जीवा जियो, मन अंदर अमृत गुरमत कर लीवा जियो, मान हर अंगरतड़ा हर सदा पीवा जियो, हर पायड़ा मन जीवा जियो, मेरे मन तन प्रेम लगा कर बाण जियो, मेरा प्रीत मित्र कर पुरख सुजान जियो, गुरमेले संत हर सुड़ सुजान जियो, हौ ना मिटो कुरबान जियो, हौ हर हर सज्जन हर मीत साई जियो, हर दसो संतो जी।

तू है मेरा गहना, तुझ निपुन जाई रहना। तू मेरे लालन, तू मेरे प्राण, तू मेरे साहेब, तू मेरे खान। रहाओ जो तुम राखो तिवगी रहना, जो तुम कहो तोई मुय करना। जय पेखो ता तू बसना, निरपो नाज पोतरा रसना। तू मेरी नवर तू पंडार, रंग रसा तू मने आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रचिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया। ता गुर ते दृढ़या एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पनवा, व्याप्त हर शोक विस्तार। व्याप्त सुरग नरक अवतार, व्याप्त तन निरतन पेख शोभा। मूल व्याधि व्याप्त लोभा, माया व्याप्त बहु प्रकारी। संजीवे प्र ओढ़ तुम्हारी रघाओ। व्याप्त अंगबुद का माता, व्याप्त पुत्र कलत्र संगराता। व्याप्त हस्त कोड़े अर बस्ता, व्याप्त रूप जोवन मल मस्ता। व्याप्त भूम रंग अरंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा। व्याप्त सेज महल सीगार, पंच दूत व्याप्त अंधहार। व्याप्त कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा। आचार व्यवहार व्याप्त ए जात, सब व्याप्त बिना रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको खां ब्या पे माए। कहो नानक जन तूर संत पाई, ताके निटन आवे माई। गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा, नैनो नींद हर दिट विकार। श्रमण सोए सुनंद विचार, रसना सोई लो मीठे साध। मन सोया माया विस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रहे। साव तवस्तु अपनी लय रहाओ, सकल सहेली अपने रसमाती। गए अपने की खबर न जाती, मुस्तनहार पंच बटवारे। तूने नगर परे ठगहारे, उनते राखे बाप न माई। उनते राखे मीत न पाई, सर्व सियाणप ना ओए रहते। साध संग ओए दुष्टवास होते, हर कृपा मुझ सारंग पान। संतन तूर सर्बनधान, साध पूजनी सदगुर संग।

मिटे कलेस सुखी होए रही है। ऐसा दाता सबगुर कहिए, तो सुख दाता जे नाम जो पावे, हर कृपा ते संग मिलावे, हर भाव जिस होए दयाल आ मिलावे, सर्बन दान गुरु ते पावे, आप जग मिटे आमन जाना, साध के संग पार ब्रह्म पछाना।

जाको रास हारस आयो तो अनस नही लपटायो। जाका कहे या दरगह चल ले सो किसको नदर ले आवे तल। जाका सब कुछ ताका होए नानक ताको सदा सुख होए। गौड़ी मोहल्ला पंजवा जाक दुख सुख सम कर जापे ताको काड़ा काम बेआपे। तेज आनंद घर साधु माहे आज्ञाकारी हर हर राय हरहाओ। जाके चिंत बसे मन आए ताको चिंता कतहु नाहे। जाके बिनस्त्यो मन ते परमा ताके कछु नाही डर जमा। जाके हृदय दियो।

जामी पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट तेरी शरण उधरे जन कोट रखाओ जेते जीते ते सब तेरे तुमरी कृपा ते सूह कनेरे जुगज वरते सब तेरा पाणा हुगम बूझे सो सच समाणा हर कृपा दीजे प्रदान नानक सिमरे नाम निधान गौड़ी महला पंजवां ताका दिस पाई गे वडभागी जाकी राम नाम लिव लागी जाके हर वसिया मन माही ताको दुख सुपने पी नाही हरहाओ सरबन धन राखे जनमागे ताके संग केल विख दुख जाहे जनकी महिमा कसी न जाए पार ब्रह्म जन रहया सुमाए हर कृपा प्रभु बिनो सुनीजे दास की तूर नानक को दीजे गौड़ी महला पंजवां हर सिमरत तेरी जाए बलाए सर्व कल्याण वसे मने आए

उठत सोवत हर संग पैरुआ जाके सिमरन जम नि डरुआ रखाओ चरण कम प्रदे निवास सगल दुखा हो या नास आसा मान तान तन एक सच ऐसा की मन में टेक मां गरीबिन साध अनाथ नान प्रव राखे दे हाथ गौड़ी महला पंजवा हर हर नाम अजन कर सूचे कोर ग्रहण पुन फल मूचे रखाओ हर के चरण हृदय मैं बसते जन्म जन्म के

सधीसोपाया मया करी पूर्ण हराया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे पाग हर हर नाम अस्त्र सुहाग। गौड़ी मोहल्ला पनवा धोती खोल विछाए हेठ गर्द वांगू लागे पेठ। बिनकर तूती मुक्त न पाई है मुद पदार्थ नाम त्याई है रहाओ। पूजा तिलक करत इस नाना

संतन टहलायो, एक नाम को थियो पुजारी, मोको अचरज गुरे दिखायो, पयो प्रगास सर पुजियारा, गुर ज्ञान मने प्रगटायो, अमृत नाम पियो मन तृप्तया, अनपय ठहरायो, मान आज्ञा सर सो पाए, दुख ठाओ गवायो, जौ सो प्रसन्न पय प्रभ ठाकुर, तब आनंद रूप दिखायो, ना किस आवत ना किस जावत, तब खेल की उहर आयो, तो नानक अगम अगम है ठाकुर, भक्त ते कर नायो, गौड़ी मखला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ताकी ओढ़ ही जय रे, जिन तारे ब्रह्मांड खंड हर ताको नाम ज पी जय रे, रखाओ मन की मत त्यागो हर जन, हुगम बुझ सुख पाइये रे, तो प्रभ करे सोई परमानो, सुगत ओई त्यागे रे, ओढ़ पत ओधारे खिन में करते बार ना लागे रे, दीन दर्द पंजन स्वामी जे पावित से निवाजे रे, सब को माल पिता प्रतपाल जी प्राण सुख सागर रे, तेंदे तोड़ नहीं से करते पूरे और तनागर रे, जाग जाते नाम तेरा स्वामी कड़कड़ अंतर सोई रे, नानक दाता की शरणाई जाते बिरथा ना कोई रे, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद, हर घर कबूरा मनो विसारे, ईगा उहा सर्व सुख दाता, सगल कटा प्रतपारे, रखाओ महा कट काटे पीतर रसना नाम पितारे, शीतल सांत सुखर सरणी जलती अगन निवारे, गर्भ कुंड नरक ते रख हजल पारे उतारे, चरण कमल आरा तुम मन में जमकी त्रास बिदारे, पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगमे पारे, गुण गावत त्यात सुख सागर जुए जन्म नगारे, ताम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारे, कर कृपा अपनो नाम दीजे नानक सद बरहारे, राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुगना ही रे घर भगत बेना जीत जन रतने मूर्ख, सा संगत जप एखे ना रहाओ, सुत संपत बनता बिनोद छोड़ गए बो लोग भोग, हैबर गैबर राज रंग जा चले गए मूड रंग, चुवा चंदन दे पूलिया सो तन थर संग रूलिया, मोय मोया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है, गौड़ी महला पंजवा मान कर तरबे हर नाम नो, सागर लहर संसार संसार गुर बोध पार ग्राम नो, रखाओ कल कालक अंधियारिया गुर ज्ञान दीप उजियारिया, बिख बिखिया पसरी अत कनी उबरे जब जब हर गुनी, मतवारो माया सोया गुर पेड़ प्रम पखोया, कहो नानक एक तिहाया कालक नदरी आया, गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारो तुही एक, सेवा तारी गुरे टेक, रखाओ अंग जुगत नहीं पाया गुर चाकर ले लाया, मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साध्या, बगसी वजो मिल एक नाम सूग सहज आनंद विश्राम, प्रवके चाकर से पले नानक तेन मुख उजले, गौड़ी महला पंजवा जीरे ओला नाम का अवर जे करन करामनो, तिन मैं पोहे जाम का, रखाओ अवर जतन नहीं पाई है वडे पा घर त्याई है, लाख इकमती जानिए आगे तिल नहीं मानिए, अंग बुद कर्म कुमामने ग्रेबालू नीर बहामने, प्रभ कृपाल कृपा करे नाम नानक साधु संग मिले, गौड़ी महला पंजवा बार ने बलिहार ने लख बरिया, नाम हो नाम साहब को प्राण अधरिया, रहाओ करन करावन तुही एक जी जंद की तुही टेक, राज ओवन प्रा तू तनी तू निर्गुण तू सरगुनी, ईगा ऊगा तुम रखे गुर कृपा ते को लखे, अंतर जामी प्रसुजान नांग तकिया तुही तान, गौड़ी महला पंजवा हर घर हर आरा दिए संत संघर मन मसे, पर मोह पो सदिये रहाओ, वेद पुराण सिमरत पने ता ऊच ब्राजत जन सुने, सगल स्थान पे पीत कीन राम सेवक कह रहत कीन, लख चौरासी जून फिरे गोविंद लोकनी जन्म मरे, बाल बुस जान पहो में रही हर सासरण नानक गही, गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाई है नीत नीत घर सेवी है, सास हर त्याई है रखाओ संत संघर मन मसे, दुख दर्द अनहेरा प्रमन से संत प्रसाद हर जापी है, तुझन दुख ना व्यापी है, जाको गुरु हर मंत्र दे तो उबरिया माया अगनते, नानको प्रमया कर मेरे मन तन वसे नाम हर, गौड़ी महला पंजवा रसना जपिए एक नाम ईगा सुख आनंद कना, आगे जी के संग काम, रखाओ
کٹ کے تیرا انگ روگ، تو گر پرساد کا راجو۔

अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निध नहीं गाया मान बिखे ही मैं लुझी है जाको रे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया।

पर शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी नेचल को थाओ नाहे बिन हर सेवा सुख नहीं हो सागते आभय जाहे जैसो गुर उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार नानक कहे सुन रे मना कर कीर्ति।

जगत में हर को सेमर सेमर कसमल सब हर रे मानस दे भौर न पावे कछु उपाव मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करना मैं।

निस्त निर्मल नाम विचार, पूर्ण पूरया बिखमार, त्रिगुटी छूटी बिम मजहार, गुर की मत जिए आई कार, इन बिग राम रमत मन मानिया, ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया, रखाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया, निर्मल बाणी परम चुकाया, लाल पै सूहा रंग माया, नदर पई बिग ठाक रखाया, उल्ट पई जीवित मर जागया, सद रवे मन हर स्यो लागया, हरा संग्रह बिग पर हर त्यागया, पाए बसे जमका पो पागया, साध रहे बादंग अंकारा, चित हर स्यो राता हुकुम अपारा।

कैसा डर कमन शब्द पिछाने तीन ने पावन जिन कहया तिन कहे नुखाने जिन बूझिया तिन सहज पिछाने देख विचार मेरा मन माने कीर्त सूरत मुक्त इकनाई तही निरंजन रहा सुमाई निकर व्याप रहा निचाई।

सुरत एक लिवलाए, सुख मांगत दुख आगल होए, सगल विकारी हार परोए, एक बिना झूठे मुक्त न होए, कर कर करता देखे सोए, तृष्णा अगन शब्द बुझाए, दूजा परम सह सुभाए, गुरमति नाम हृदय विसाए।

खेमा गई ब्रत सील संतोखं, रोग न व्यापे ना जम दोखं, मुक्त पय प्ररूप न रेखं, योगी कौ कैसा डर होय, रोग बिरख गृह।

वेद पुराण पढ़े सुन थाटा बिन रस राते मन भो नाटा ज्यो चातरक जल प्रेम प्यासा ज्यो मीना जल भाए उलासा नानक हरस पी त्रिपतासा गौड़ी महला पहला हट कर मरे ना लेखे पावे वेस करे बो पसम लगावे नाम सार बहुत पछतावे तू मन हर जियो तू मन सूख नाम सार।

से मुकाम सा मरे संते माया दाम मैं तन दीजे हर अमृत नाम रैयत मैर मुकदम सिकदार निचल कोई ना दिसे संसार अफर काल कूल सिर मार निचल एक सच्चा ससोई जिन कर साजी तिने सब गोई ओ गुरमुख जापे ता पद होई काजी सेख पेह फकीरा वड्डे कहावे होमे तन पीरा काल ना छोड़े बिन सतगुर की तीरा काल जल जेवा अरनैणी कानी काल सुने बिख बैणी बिन सबदे मूठे दिन रैणी हिरदे सच वसे हर नाए काल ना जोए सके गुण गाए नानक गुरमुख सब सुमाए गौड़ी महला पहला बोले साज मिथ्या नहीं राई चाले गुरमुख हुक मर जाई रहे अतीत सच्चे सरनाई सत कर वैसे काल ना जोह मनमुख को आवत जावत दुख मोह रहाओ आप्यो पियो अकथ कथ रहिए निरकर बैस सहज कर लइए हस माते उस कहिए गुरमत चाल निचल नहीं डोले गुरमत साच सहज कर बोले पीवे अमृत तत विरोले सतगुर देखिया दिखिया लीनी मन तन अर्प्यो अंतरगत कीनी गत मित पाई आत्म चीनी भोजन नाम निरंजन सार परमहंस सजो त्यो पार जय देखो है एक अंकार रहे निरालम एक असर करनी परम पद पाया सेवा गुर चरणी मन ते मन मानिया चुकी अंग प्रमणी एन दिद कौन कौन नहीं तारिया हर जस संत भगत निस्तारिया प्रभ पाए हम अवर ना पारिया साच मैल गुर अलख लखाया निचल मैल निशाया माया शासन तोखे परम चुकाया जिनके मन मसिया सस होई तिनकी संगत गुरमुख होई नानक साच ना मलख होई गौड़ी महला पहला राम नाम चित्रा पे जाका उपजंब दर्शन की जे ताका राम ना जपो अपाग तुम्हारा जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा रहाओ गुरमत राम जपे जन पूरा तेत काट अनहद बाजे तूरा जो जन राम भगत हर प्यार थे प्रभ राखे कृपा तार जिनके हृदय हर घर सोई तिनका दर्श परस होई सर्व जिया में एको रवे मन अहंकारी फिर जूनी पवे सो बुझे जो सदगुर पाए होमे मारे गुर सब दे पाए अर्ध उर्द की संत क्यों जाने गुरमुख संत मिले मन माने हम पापी निर्गुण को गुण करिए प्रभ होए दयाल नानक जन करिए सोले अष्टपदियां गुवारे री गौड़ी पिया गौड़ी बैरागण महला पहला एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद ज्यो गाई को गोयली रखे कर सारा अहंस पाले राख ले आत्म सुख तारा ए त्युत राखो दीन दयाला तौ शरणागत नजर निहाला हरहाओ जय देखो तय राव रहे रख रख नहारा तू दाता पूता तू है तू प्राण अधारा किरत पया अध ऊर दी बिन ज्ञान बिचारा बिन उपमा जगदीश की बिन से ना अंधेहारा जग बिरसत हम देखिया लोभे अहंकारा गुर सेवा प्रापाया सच मुक्त द्वारा निकर मैल अपार को अपरम्पर सोई बिन शब्द थिर को नहीं बूझे सुख होई क्या ले आया ले जाए क्या फसे जमजाला डोल बदा का जेवरी आकाश पताला गुरमत नाम ना विसर है सहजे पद पाई है अंतर शब्द निधान है मिले आप गवाई है नजर करे प्रभ अपनी गुण अंक समाव नानक मेल ना चुकई लहा सद पावे गौड़ी महला पहला गुर प्रसादी बूझ ले तो होए नबेरा घर का नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा जेला कर्म कमाव ही बिन गुर अंधेहारा रखाओ अंधे अकली बारे क्या तिरसो कही है बिन गुर पंथ ना सूझई केत विद निर्भई है खोटे को खरा कहे खरे सार न जाने अंधे का ना हो पारखू कली काल विडाने सूते को जागत कहे जागत को सूता जीवत को मुआ कहे मुए नी रोता आपत को जाता कहे जाते को आया पारकी को अपनी कहे

कथन नहीं रीसे, इस पद जो अर्थ आए ले सो गुरु हमारा, नानक चीन ने आप कहो सो अपर अपारा, तब आपे आप वर्तदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बुझिए साब ब्रह्म।

आप हो जाओ, मानव को सूत को कभे न जाए, जितिर शब्द न पीजे हर कहे नाय, रहाओ सबो सूत के जेता मो आकार, मर मर जमे वारो वार, सूत क अग्न पौने पानी माहे, सूत क भोजन जेता किस खाहे, सूत क कर्मन पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए, सदगुर सेवे सूत क जाए, मरे न जन्मे काल न काए, सास्त सिमरत सोध देखो कोय, विण नावे को मुक्त न होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, काल में गुरमुख उतरस पार, साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रहे सुमाए, गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण आधारा, हर जू राखो हृदय उरतारा, गुरमुख शोभा साज दुआरा, पंडित हर पढ़ तजो विकारा, गुरमुख भौजल उतरो पारा रहाओ, गुरमुख विचो होमे जाए, गुरमुख मैल न लागे आए, गुरमुख नाम से मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुखोई, अपना मन पर बुद्ध हो बुझो सोई, लोग समझावो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुखोई, मनमुख डंप बहु चतराई, जो कुछ कमावे सो थाए ना पाई, आवे जावे ठौर ना काई, मनमुख कर्म करे बहुत अपमाना, बागजो लाए बहे नृत्याना, जा पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई, गुरमुख जात पद नामे वड्याई, सायर की पुत्री बिदार गवाई, नानक बिन नावे झूठी चतराई, गौड़ी महला तीजा, ए जो का धर्म पढ़ो तुम पाई, पूरे गुरसब सोजी पाई, ऐथ अगे हर नाम सुखाई, आराम पढ़ो मन करो विचार, गुरप्रसादी मैल उतार रहाओ, वाद विरोध न पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए, गुर के शब्द सच लिवलाए, हौ में मैला एओ संसारा, नित तीर्थ नावे न जाए अंकारा, बिन गुर पेटे जम करे खुवारा, सोजन साचा दे हौ में मारे, गुर के शब्द पंच संघारे, आप तरे सगले कुल तारे, माया मोहे नट बाजी पाई, मानमुख अंदर है लबटाई, गुरमुख अलिप्त रहे लिवलाई, बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर सिना फिरे अंकारी, आप न चीने बाजी गारी, कापड़ पैर करे चतराई, माया मोह अध परम फुलाई, बिन गुर सेवे बहु दुख पाई, नाम रते सदा बैरागी, गृह अंतर साच लिवलागी, नानक सतगुर सेवा से वड़भागी, गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तेते उपजे दे मोह प्यासा, त्रै गुण परमे नाही निज करवासा, हम घर राखे सदगुरु मिलाया, अन दिन भगत घर नाम दृढ़ाया, रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पड़वाद वखाणे सिर मारे जमकाला, तत न चीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान कुमार्ग पाए, हर नाम सारिया बहु कर्म दृढ़ाए, पवदल डूबे दूजे पाए, माया का मोहताज पंडित कहावे, विख्या राता बहु दुख पावे, जम का गल जेवड़ा निदकाल संतावे, गुरमुख जम

लाख अडंबर बहुत विस्तार, ना बिना झूठे पासार, हर का नाम सोई जन ले, पर कृपा नानक जिस दे, गौड़ी महला पंजवा, आद मर जो अंत निभा है, सो सजम मेरा मन चाह है, हर की प्रीत सदा संग चाल है, दयाल पुरख पूर्ण प्रतपाल रहाओ, बिन सतनाही छोड़।

हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, रहाओ तज होमे गुर ज्ञान भजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसे सो संग न गयो, सागत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहे हो, ओड़ मदे किने गुरमुख लहे हो।

सुबाज वखर कोई ना सूझे, नाम लेवो खेन खेनो, परख लेखा नदर साची, कर्म पूरे पाया, नानक नाम महारस मीठा, गुर पूरे सज पाया।

हो में मारे इन बद मेरो प्यारे सा तन सुहागण सदा रंग राती साचे नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गई है दुबदा मार ने मारे नानक कामण हर भर पाया सगले दुख विसारे कामण पिरो फुली जियो माया मोए प्यारे झूठी चूड़ लगी जियो ऊड मुठी कूड़ियारे ऊड़ ने मारे गुरमत सारे जुए जन्म नहारे गुर

भावे अन ना पानी, पानी अन ना भावे, मरिए भावे, बिन पर क्यों सुख पाईए, गुर आगे करो बेनंती, जे गुर भावे, जो मिले तवे मिलाईए, आपे मिल ले सुखदाता, आ मिलिया कर आए, नानक कामन सदा सुहागण, ना तिर मरे न जाए, गौड़ी मोहल्ला तीजा, कामन हर रस वेदी जियो, हर के सहज सुपाए, मन मोहन मोहे लिया जियो, दुबदा सहज सुमाए, दुबदा सहज सुमाए, कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए, यो शरीर कूड़क सत भरिया, गलताई पाप कमाए, गुरमुख भगत

दयाल मनोहर भगत वत्सल बिरदाया भगत वत्सल पुरख पूरन मने चिंदया पाईए तम अंध कूब ते उधारे नाम मन मसाईए सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जान गुण अंग भगती गाया बिनवंत नानक करो कृपा पार ब्रह्म हर राया चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जनतारी करुणामय समर्थ स्वामी घट घट प्राण अधारी प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम अपारो शरण जोग समर्थ मोहन सर्व दुख बेदारो रोग सोग सब दुख बिनसह जगत ना मुरारी बिनवंत नानक करो कृपा समर्थ सब कल तारी गुण गाओ मना अच्युत अविनाशी सब ते ऊज दयाला बेसम पर देवन कौ एक सर्व करे प्रतपाला प्रतपाल महा दयाल दाना दया थारे सब किसे काल कंटक लोभ नस जी जाके प्रभस तो प्रसन्न देवा सबल सेवा पई पूर्ण काला बिनवंत नानक किश पुन्नी जगत दीन दयाला गौड़ी मोहल्ला पंजवा सुन सखिए मिल उदम करेगा मनाए लय हर कंत मान त्याकर भगत ठगौरी मोह है साधु मंत सखी बस आया फिर छोड़ न जाई हे रीत पली भगवंत नानक जरा मरण पय नरक निवार उनीत करेथ जंत सुन सखिए ए परी बेनंती यो मतांत पकाइए सह सुपाए उपाद रहत होए गीत गोविंद गाइए कल क्लेश मिटे प्रमनस मन चिंदिया फल पाईए पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नानक नाम त्याईए सगी इश करी नित सुख मनाई प्रभ मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सबाए खोज लो हर संत जना संग समृद्ध पुरख मिलाए नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवड़ भागी माए सखी नाल वसा अपने ना प्यारे मेरा मर तन हर संग हिलिया सुन सवीए मेरी नींद भली मैं अपनड़ा पिर मिलिया परम खोयो सांत सह स्वामी प्रगास पया कौल खिलिया वर पाया प्रभ अंतर जामी नानक सुहाग ना टलिया एक ओंकार सदगुर प्रसाद गौड़ी बामन अखरी मोहल्ला पंजवा श्लोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंदप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत नरोदरा गुरुदेव सांत सदबुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सा पाप हरता गुरुदेव पतत पवित करा गुरुदेव आद जुगाद जो जुग गुरुदेव मंत हर जप उधरा गुरुदेव संगत प्रामेल कर कृपा हम मूड पापी जित लगतरा गुरुदेव सदगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक।

पात्र कर पातो ज्ञानी सोए जाके दृढ़ सो कैत सुनत कस जोग न हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत संसर सब ताके ज्ञानी तत गुरमुख बिचारी नान

एक नाम ले मने परो यैया जन्मन हारी है और पूरे की टेक नांग ते सुख पाया जाके हीरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे ई पूत के मीत गुरपूरे उपदेसया नानक जपिए नीत पौड़ी अनदिन सिमरो तास को जो अंत सहाई होए ए बिखिया दिन चार छे छाड़ चलो सब कोए ताको मात पिता सुतिया गृह बंता का संग न लिया ऐसी संच जो बिनसत नाही बासे ती अपने कर जाही सा संग काल कीर्तन गाया नानक ते बौर न आया श्लोक

जम मरे गर्भ जोन दुख पाए, मोह मगन लपट तरह आहो आवे जाए। टहे तो टहेद अब टह परे, साजना सरनाए दुखे फाहे काटिया, नानक लिए सुमाए।

हर हर नाम श्रवण जे सुनिया गुरमुख जे कट रहे समाई नानक ते जन मिली वडाई श्लोक नानक नाम नाम जप जपया अंतर बाहर रंग गुर पूरे उपदेसया नरक नाहे सा संग पौड़ी नन्ना नरक परे ते नाही जाके मन तन नाम साही नाम निधान गुरमुख जो जपते बिख माया मैं ना ओए खपते नन्ना कार न होता ताको ना मंत्र गुर दीनो जाको निध निधान हर अमृत पूरे ते बाजे नानक अनघ तूरे स्वरूप पतरा की गुर पार ब्रह्म तय पर

देह सर्वत्र मैं ऊन न कतहु उठाए, अंतर भार संग है नानक काए दुराए पौड़ी। ववा वैर न करिए काहू, कट कट अंतर ब्रह्म समाहू। वास देव जलथल मैं रविया, गुर प्रसाद विरले ही गवया। वैर विरोध मिटे ते मनते, हार कीर्तन गुरमुख जो सुनते। वर्ण चेन सगले ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता। श्लोक हो करत बेहानिया, सागत मुगध अजान। रड़क मुए ज्यो त्रिखावंत, नानक किरत कमान पौड़ी। अड़ाड़ा डाड़ मिटे संग साधु, कर्म धर्म तत नाम अराधु। रूड़ो जे बस्यो रिदमाही, ओआ की डाड़ मिटत बिन साही। अड़ाड़ करत सागत गावारा, जे हीए अंगबुद्ध विकारा। अड़ाड़ा गुरमुख अड़ाड़ मिटाई, निमुख माए नानक समझाई। श्लोक साधु की मन ओट गहो, उगत सियान पत्याग। गुर दीख्या दे मन बसै, नानक मस्तक भाग पौड़ी। ससा सरन परे अवहारे, शास्त्र सिमरत वेद बुकारे। सोधत सोधत सोध बिचारा, बिन घर भजन नहीं छुटकारा। सास सास

दृष्टि आया उस्तद करण जोग पौड़ी खखा खरा सरा होता हु जो खिर में ऊने सुबर पराहु खरा निमाना होत परानी आनदन जापे प्रभ निर्वानी भावे खसम ता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्सन हारा नानक साहेब सदा दयारा तलोक सत कहो सुन मान मेरे करन परो हर राय उगत सियानप सगल त्याग नानक लय समाए पौड़ी ससा सियानप छाड़ एयाना हिकमत हुक्म ना प्रपतियाना सहज पाद करे चतराई संग तुहारे एक ना जाई सोऊ सोऊ जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक ताको दुख न व्यापे सलोक हर हर मुखते बोलना मन बूठे सुख होए नानक सब मैं रव रहया शांत अनंतर सोए पौड़ी फेरो कड़ कड़ सगल कै पूर रहे भगवान होवते आए साध सदीव दुख भंजन गुर ज्ञान हौ छुटके हुए आनंद ते हौ नाही ते आप अते दुख जन्मे मरन संत संग प्रताप हित कर नाम दृढ़ दयाला संते संग होत कृपाला।

कर कृपा। हम मूड पापी जित लगतारा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। इहो श्लोक आद अंत पढ़ना, गौड़ी सुखबनी महला पंजवा। श्लोक एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आदि गुर ए नमः, जुगाद गुर ए नमः, सतगुर ए नमः, श्री गुरुदेव ए नमः। अष्टपदी सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो, कल क्लेश तन मय मिटावो। सिमरो जास विषम पर एक, नाम जपत अगणत अनेक। वेद पुराण सिमरत सुधाखिर, इन्ने राम नाम एक आखिर।

भगत जना कई मन बस राम रहाओ। प्रभु के सिमरन गर्भ न बस, प्रभु के सिमरन दुख जम नस, प्रभु के सिमरन काल पर हर, प्रभु के सिमरन दुश्मन टर, प्रभु सिमरत कछ बिघन न लाग, प्रभु के सिमरन अन दिन जाग, प्रभु के सिमरन पौ न व्याप, प्रभु के सिमरन दुख न संताप, प्रभु का सिमरन साध के संग, सर्ब निधान नानक हर रंग, प्रभु के सिमरन हृदय सिद्ध नौ निध, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभु के सिमरन जब ता पूजा, प्रभु के सिमरन बिन सह दूजा, प्रभु के सिमरन तीर्थ इस नानी, प्रभु के सिमरन तर्क है माननी, प्रभु के सिमरन हुए सो भला, प्रभु के सिमरन सुफल भला, से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए, प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभु के सिमरन उदरे मूचा, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझ, प्रभु के सिमरन सबके सुझ, प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदमाए सुमाए, प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरह से तनवंत, प्रभु को सिमरह से पुतवंत, प्रभु को सिमरह से जन परवान, प्रभु को सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरह ते बेमोताज, प्रभु को सिमरह ते सर्व के राजे, प्रभु को सिमरह से सुखवासी, प्रभु को सिमरह सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगे रवाला, प्रभु को सिमरह से पर उपकारी, प्रभु को सिमरह तिन सद बलिगारी, प्रभु को सिमरह ते मुख सुहावे, प्रभु को सिमरह तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरह तिन रमल रीता, प्रभु को सिमरह तिन अंध कन्हेरे, प्रभु को सिमरह बसे हर नेरे, संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु के सिमरन कार्य पूरे, प्रभु के सिमरन कबहु ना चूरे, प्रभु के सिमरन हर गुरबानी, प्रभु के सिमरन सहे सुमानी, प्रभु के सिमरन नित्यलयासन, प्रभु के सिमरन कमल बेगासन, प्रभु के सिमरन अनहा चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरह से जन जिनको प्रमया, नानक तिन जन सरणी पया, हर सिमरन कर पगद पगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाय, हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नी चौकुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की ओ सगल अकारा, हर सिमरन मैं आम निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, सलोक दीन दर्द दुख पंजना, घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रसाथ अष्टपदी, जय मात पिता सुदमीत न पाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई, जय महाभयान दूध जम दलै, तै केवल नाम संग तेरा चलै, जय मुस्कल हो वै अदपारी, हर को नाम खिन महे उधारी, अनक पुनः चरण कर्तनी तरै, हर को नाम कोड पाप पर हरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कन्हेरे, हर सेठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया, लाख करोरी बंधन पर है, हर का नाम जपत निस्तर है, अनक माया रंग तिघना बुझावे, हर का नाम जपत आघावे, जे मार्ग इहो जात अकेला, तय हर नाम संग हो सुहेला, ऐसा नाम मन सदा ते आई है, नानक गुरमुख परम गद पाई है, टूट नहीं कोट लख बाही, नाम जपत ते पार पराही, अनक बिघन जय आए संघार, हर का नाम तत्काल उधार, अनक जून जन्म में मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हो मैला मल कभू न थोवे, हर का नाम कोड पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइये साध के संग, जे मार के गने जाए न कोसा, हर का नाम उहा संतोसा, जे पैंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहां पंतेरा को

दिन रात हर हर औखद साध कुमात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक नानक जन के बिरत विवेक हर का नाम जन को मुक्त जोत हर के नाम जन को तृप्त भूत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परय न पंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत

सगल कटा को देव उदान करण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गतमित जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्तत तुमते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जे कड़ वसे हर।

काल अष्टपदी परमैया के गुण चेत परानी तवन मूल ते कम दृष्टानी किंतु सासवा सीगारेया सर्व अग्न में जिने उबारेया पार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद पया ऊपर साग सैन मुख प्याओ बैठ तो दैन इहो निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्स लियो तो नानक सीजे जे प्रसाद थार ऊपर सुख बसे तुद प्रात मीत बनता संग हसे जे प्रसाद पीवे सी तल जला सुखदाई पवन पाप अमुला जे प्रसाद भोगे सबरसा सगल समग्री संग साध बसा तीन हस्त पाप करण नित रसना इसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दुख मूड अंध व्यापे नानक काढ़ लेओ प्रभ आपे।

छोड़ के लागे आन सो आए, नानक कहू ना सीजई, बिन नावे पद जाए, अष्टपदी तस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कारण विखोड़ गवावे, एक पी ना दे दस पी हिर ले, तो मूड़ा को कहां करे, जे ठाकर सो ना ही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा, जाके मन लागा प्रा मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा, जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया, अगंत सो अपनी दे रास, खाद पीत बरते अनदे उलास, अपनी अमान कछ भौर साहो ले, अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीत आप की खोवे, भौर उसका विश्वास न होवे, जिसकी वस्तु आगे रख, प्रभु की आज्ञा माने मत, उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहेब सदा दयाल, अनक पांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत, बिरख की छाया सो रंग लावे, ओ बिन से ओ मन पछतावे, जो दिसे सो चलनहार, लपट रहे होते अंध अंधार, बटाऊ स्यो जो लावे नेह, ताको हाथ न आवे केह, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाई, मिथ्या तन तान कुटुंब सुबाया, मिथ्या होमे ममता माया, मिथ्या राज जोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्र, मिथ्या

रंग संग माया पेह हस्त मिथ्या त्रो मो अभमान मिथ्या आपसी ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीव हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन मिथ्या हस्त पर दर्प को हिर मिथ्या नेत्र पेखत परतर रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर्व कार को थाव मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तान नहीं पर उपकारा मिथ्या बासले दिवकारा बिन बूझे मिथ्या सब भय सबल दे नानक हर हर नाम लय बिरती सागत की आरजा साज बिना के होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ताके दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय मेघ बिना जो खेती जाय गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यो किरपन के निरार्थ दाम तन तन ते जन जे कड़ बस्यो हरनाओ नानक ताके बल बल जाओ रहत अवर कश अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत जान नहार प्रभु परवीन बार पेख न काहू पीन अवर उपदेश आप न कर आपत जावत जन्मय मर जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरे संसार जो तुम पाने तिन प्रभु जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जान अपना किया आपे माने आपे आप करत नबेरा किसे दूर जिनावत किसे बुझावत नेरा वो पाप स्यान पर

नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी कह गरीबी समाह, ब्रह्मज्ञानी परे पुकारो माह। ब्रह्मज्ञानी कह नागी तंदा, ब्रह्मज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्मज्ञानी कह हो सो फला, ब्रह्मज्ञानी सोफल फला। ब्रह्मज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्मज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्मज्ञानी कह एक कह रंग, ब्रह्मज्ञानी कह बसे प्रसंग। ब्रह्मज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्मज्ञानी कह नाम परवार। ब्रह्मज्ञानी सदा सजागत, ब्रह्मज्ञानी अंगबोध त्यागत। ब्रह्मज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी कह घर सदा आनंद। ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्मज्ञानी एक संहेता। ब्रह्मज्ञानी कह होए अचिंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्मज्ञानी करे प्रव्याप, ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्मज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइए। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्मज्ञानी का सगल मन माह। ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म

अर्खरंग हस कभू निंद चिंद व्यवहार कभू ऊपकस पयाल कभू बेता ब्रह्म विचार नानक आम मिला मनहार कभू नित करे बोपात कभू सोए रहे दिन रात कभू महा क्रोध विकराल कभू सर्व की हो तरवाल कभू होए बहे बड़ राजा कभो पेखारी नीच का साजा कभू अब कीर्त में आवे कभू पला पला कहावे यू प्रवरा के तिल ही रहे गुर प्रसाद नांग सच कहे कभू होए पंडित करे बखियान कभू मोन तारी लावे ध्यान कभू तड़ती स्नान कभू सिर साधक हो ज्ञान कभू कीट हस्पतंग हो जिया अनक जोन परमे परमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखा।

तेन पुरुष का उत्तम कर्मान योगज करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुपय होवे सो होए करणे गार पछाणे सोए प्रभु का किया जन्म मीठ लगाना जैसा सा तैसा त्रिटाना जेते उजे तुमाए सुमाए वे सुख निदान उनहू बने आए आस को अवधि नो मान नानक प्रभु जन एको जान। श्लोक सर्व

कै रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक की रखे निरंकार सो सेवक जे दया प्रवतार नानक सो सेवक सास सास सुमार अपने जन का पर्दा ढक अपने सेवक की सर पर रख अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रख ताकि गतमित कोई न लख प्रभ के सेवक को ना पहुंचे प्रभ के सेवक ऊजते ऊचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दहज प्रगटाया निकी कीरी मैं कल रख पसम करे लस्कर कोड लख जिसका साधन काटते आप ताको राखत दे कर हाथ मानस जतन कर्तव पात जिसके कर्तव्य व्यर्थ जात मारे ना रखे अवर न कोय सर्व जिया का रखा सोय काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपीए ई अमृत यो मन तन त्रपीए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किश अवर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिवतान ने मर्तन नामे नाम सुमा।

लोभ मोह संग साधा पखे पर कृपा प्रवे अपनी हर आप परखे नानक चलत न जापनी ओ सके ना लखे। सलोक महला पंजवा नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रवे आवे चित जित देन विसरे पार ब्रह्म हिट पलेरी रुत महला पंजवा नानक मित्राई ते स्यो सब किश जिसके हाथ पुमित्रा से ही कंडी है एक वेखना चल है साथ पौड़ी अमृत नाम निधान है मिल पी वो पाई जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई कर सेवा पार ब्रह्म गोर भुख रह ना काई सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई तुझ जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक सरणाई। सलोक महला पंजवा डिठड़ो हवठाए ऊन ना काई जाए नानक लद्दा तिन सुवाओ जिन्ना सदगुर पेटिया महला पंजवा दामनी चमतकार त्यों वरतारा जग खे वथ सुहावी साए नानक नावज पंदो तिस्तनी पौड़ी सिमरत सहतर सोध सब किने की मना जानी जोजन पेटे साध संग सोहर रंग माणी सच नाम करता पुरख ए रतना काणी मस्तक हो वे लिखया हार सिमर पुराणी तुसा दिचे सच नाम नानक मेहमानी। सलोक महला पंजवा अंतर चिंता नैनी सुखी

प्रणनात्य कौ जो हर लड़ लागे जीवत से प्रवान होए हर कीर्तन जागे साध संग जिन पाया से वडभागे नाय विसरे त्रिग जीवना टूटे कच तागे नानक धूल पुनीत साध लख कोट पेरागे सलोक महला पंजवा धरण सुवलनी खाड़ रतन जड़ावी हर प्रेम पुरख मन उठा सबे काज सुहे लड़े थीए गुरु नानक सदगुर तुठा महला पंजवा फिरदी फिरदी दह दिशा जल पर्वत बनराए जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़ी है सो सच कमावो नेड़े देखो पार ब्रह्म एक नाम त्याव होए सगल की रेणका हर संग सुमाव।

तू तरवर हो पंखी आहे, मद भागी तेरो दर्शन नाहे। तू सतगुर आओ नाओ तन चेला, कहे कबीर मिले अंत की बेला। गौड़ी कबीर जी जब हम एको एक कर जाने आ, तब लोगे काहे दुख माने आ। हम अपत अपनी पद खोई, हमरे खोज परो मत कोई रखाओ। हम मंदे मंदे मन माही सा।

पद हर प्रवान, सर्व त्याग फल केवल राम। गौड़ी कबीर जी, नगन फिरत जाओ पाइये जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग, क्या नांगे क्या बाधे चाम। जब ने चीन से आत्म राम, हरहाओ मूड मुडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गई आकाई, बिंद राग जाओ तरिये पाई, खुसरे क्यों ना परमगत पाई, कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बेन किन गद पाई। गौड़ी कबीर जी, संध्या प्रात स्नान कराही, ज्यों पै दादुर पानी माही, जाओ पै राम राम रत नाही, ते सब धर्म राय कै जाही रहाओ। काया रत बहरू पर चाही, तिन को दया सुपने पी नाही, चार चरण कह बहु अगर, साधु सुपावे कल सागर। कहो कबीर बहु काय करी जय, सर्व छोट।

अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनंत जन्म किए बहु रंगा, ऐसे काल हम बहुत बसाए, जब हम आराम गर्भ हो आए रघाव। योगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा शतरपत, कबहू पेघारी, सागत मरे संत सब जीव, राम रसायन।

हर हर बास सुगंध फसाई, तहर कबीर चेतरे अंधा, सत राम झूठा सब तंदा, गौड़ी कबीर जी तिप दे चार तुके, जम ते उल्ट पए है राम, दुख बिनसे सो कियो विश्राम, बैरी उल्ट पए है मीता, सागत उल्ट सुजन पै चीता, अब मुझे सर्ब कुशल कर मानिया, साध पई जब गोबिंद जाने आ रहाओ, तन मैं होती कोड उपाध, उल्ट पई सुख सहज समाध, आप शाने आपे आप, रोग ना व्यापे तीनों ताप, तब मन उल्ट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ, कहो कबीर सुख सहज समाव, आप ना डरो ना अवर डरावो, गौड़ी कबीर जी पिंड मुए जो के कर जाता, शब्द अतीत अनाह दराता, जिन राम जानिया तिने पछानिया, जो गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी रहाओ, सो गुर करो जे बौर ना करना, सो पद रवो जे बौर ना रवना, सो त्यान तरो जे बौर ना तरना, ऐसे मरो जे बौर ना मरना, उल्टी गंगा जमन मिलावो, बिन जल संगम मन में नावो।

अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सदगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुखमो न मांगया पावे बिखिया अजो सुत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाओ इस सुखते से ब्रह्म डराना सो सुख हमो साज कर जाना संकादक नारद मुन सेखा तिन पी तर मैं मन नहीं पेखा इस मन को कोई खुद जो पाई ता छूटे मन कहां सुमाई गुर प्रसादी जय दो नामा भगत के प्रेम इन ही है जाना इस मन को नहीं आवन जाना जिसका परम गया तिन साज पछाना इस मन को रूप न रेख्या काई हुक्मे होया हुक्म बूझ सुमाई इस मन का कोई जाने पेओ ए मनलीन पय सुख देओ जियो एक अर सगल शरीरा इस मन को रव रहे कबीरा गौड़ी ग्वारेरी अहे निस एक नाम जो जागे केतक सिद्ध पय लिव लागे रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे एक नाम कल्प तरतारे जो हर हरे सो होए न आना कहे कबीर राम नाम पछाना गौड़ी पी सोठ पी रे जी न लज लाज तोय नाही हर ताज कद काहू के जाही रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जान पर कर जातन सोही सो साहेब रहया पर पूर सदा संग नाही हर दूर।

आओ साधु संगत दियो रलाए पंच दूत ते लियो छिड़ाए अमृत नाम जपो जब रसना अमोल दास कर लीनो अपना सतगुर कीनो पर पुकार काढ लीन सागर संसार चरण कमल स्यो लागी प्रीत गोविंद बसे निता नित चीत माया तप्त बुझिया अंग्यार मन संतोख नाम आधार जल थल पूर रहे प्रस्वामी जत पेखो तत अंतर जामी अपनी भगत आप ही दरड़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे पाई जिस कृपा करे जिस पूर्ण साज कबीर को स्वामी गरीब निवाज जल के सूतक थल के सूतक सूतक ओपत होई जन्मे सूतक मुगे फुन सूतक सूतक परज बगोई कौरे पंडिया कौन पवीता ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता रगाओ नयनो सूतक बयनो सूतक सूतक श्रवनी होई उठत बैठत सूतक लागे सूतक परे रसोई फासन की बेद साव को जाने छूटन की एक कोई।

गयो मन बौरारे, माया यो व्यवहार, जैसा रंग सुंभ का मन बौरारे, त्यों पसरे पासार। नावन को तीर्थ करे मन बौरारे, पूजन को बो देव कहो कबीर, छूट नहीं मन बौरारे, टूटन घर की सेव गौड़ी, आगन न दह पवन नहीं मगन, तस्कर नेर न आवे, राम नाम तन कर संचौनी, सो तन कथी न जावे, हमारा तन माधो गोविंद तरणी तार, ए सार तन कही है, जो सो प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लई है, हरहाओ इस तन कारण से संकादक, खोज पै उदासी, मन मुकंद जे बा नारायण, परे न जम की फासी, निज तन ज्ञान पद गुरदीनी, तास सुमत मन लागा, जलत अम्ब थम मन तावत, परम बंधन पो पग, कहे कबीर मदन के माते, हृदय देख बिचारी, तुम कर लाख कोट असभस्ती, हम कर एक मुरारी, गौड़ी जो कब के कर मुष्ट चरण की, लुब्ध न त्याग दयो, जो जो कर्म किए लालच स्यो, ते फिर गरे परे हो, भगत बेन बिरथे जन्म गयो, साध संगत भगवान भजन बेन, कही न सच रहो रहाओ, जो उद्यान कुसुम प्रफुल्लत, किने न कराओ लयो, तैसे प्रमत अनेक जोन में, फिर कार हयो, या तान जोबन आर शुद्ध दारा, पेखन को जो दयो, तिन ही माह अर्घ जो उर्जे, इंद्री प्रेर लयो, औध अनल तन तिन को मंदर, चौधरी ठाट ठयो, कहे कबीर ऐ सागर तरण को, मैं सदगुर ओट लयो, गौड़ी

इस माटी में पमन समाया, झूठा प्रपंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी, कहे कबीर एक नीव सारी, खिन में बिन सजाए अंकारी गौड़ी। राम जपो जी ऐसे ऐसे, त्रू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, रहाओ जत पावे ता हुक्म नावे, इस बेड़े को पार लंघावे, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चुग गई फिर आमन जानी, कहो कबीर भज सारंग पानी, उरवार पार्षद एको दानी, गौड़ी नावी जोन छाड़, जो जग में आयो लागत पवन खसुम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रखाओ, गर्भ जोन में उर तब करता, तो जठर अग्न में रहता, लगत उरासी जोन प्रमे आयो, अब के शुटके ठौर न ठायो, कहो कबीर पर सार्ग पानी, आर्त जिसे जात न जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्गवास ना बाँची है, दरकिन नरक निवास, होना है सो होई है, मने न कीजे आस, रमैया गुण गाइये, जाते पाइये परमन धान रखाओ, क्या जप क्या तव संजमो, क्या व्रत क्या स्नान, जब लग जूत न जानिए, पाओ भगत भगवान, संपे देख न हरखिए, विपत देख न रोए, जो संपे त्यो विपत है, विद ने रचिया सो होए, कहे कबीर अब जानिया, संतन हृदय मजार, सेवक सो सेवा पले, जे कड़ बसे मुरार, गौड़ी रे मन तेरो कोय नहीं, खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को, तैसो यो संसार, राम रस पिया रे, जे रस बिसर गए रस और रखाओ, और मुए क्या रोई है, जो आपा थिर न रखाए, जो उपजे सो बिनस है, तो का रोवे बलाए, जय की उपजी तै रची, पीवत मर्दन लाग, तय कबीर किद चेतया, राम सिमर बैराग, राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी, लोचन परी ले उसासा, और ना पीजे पग ना खिसे, हर दर्शन की आशा, उड़ो ना कागा कारे, बेग मलीजे अपने राम प्यारे रहो, कहे कबीर जीवन पद कारण, हर की पगत करीजे, एक आधार नाम नारायण, रसना राम रवीजे, राग गौड़ी ग्यारवी, आस पास कण तुरसी का बिरवा, माज बनारस गाऊ रे, हुआ का स्वरूप देख मुई ग्वारन, मोको छोड़ न आऊ न जाहू रे, तुहे चरण मन लागो सारंग तार, सो मिले जो बड़ भागो रघाओ, बिंद्राबान महरन मनोर, कृष्ण चिरावत गाऊ रे, जाका ठाकुर तुही सारंग तार, मोहे कबीरा नाऊ रे, गौड़ी पूर्वी बारवी, बिपल बस्तर केते हैं पैरे, क्या मन बदे बस, कहा पया नर देवा धोखे, क्या जल बोरो ज्ञाता, जियरे जाएगा मैं जाना, आगत समझ ए आना, जब जब देखो बौर ना देखो, संग माया लपटाना रखाओ, ज्ञानी त्यानी ब उपदेसी, यो जग सुग लो तंडा, कहे कबीर एक राम नाम बेन, या जग माया अंधा, गौड़ी बारवी मारे छाडो परम, पलट होए नाचो, या माया के डांडे, सूर के सनमुख रन ते डर पे, सती के सांचे फांडे, डगमग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद पाइये, लीनो हाथ सुंधौरा रहाओ, काम क्रोध माया के लीने, या फिर जगत बिगूता, कहे कबीर राजा राम न छोड़ो, सगल ऊचते ऊंचा गौड़ी तेरवी, फुरमान तेरा सिरे ऊपर, फिर न करत भी चार, तुही दरिया तुही करिया, तुझे ते निस्तार, बंदे बंदगी एक तैयार, साहब रोज तरो के प्यार रखाओ, नाम तेरा आधार मेरा, जो फूल जई है नार, कहे कबीर गुलाम कर का, जियाए पावे मार गौड़ी, लग चौरासी जी जोन में, प्रमत नंद बोथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो होए, आग बड़ो बपरा कोरे, तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे, तरण आकाश दसो दस नाही, तब

ऐसो ठाकुर जाके माई ना बापोर गौड़ी। निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी। निंदा बाप निंदा मैं तारी रहाओ, निंदा हुए ता बैकुंठ जाइए। ना पदार्थ मने बसाइए, हृदय सुजो निंदा होए। हमरे कपड़े निंदक तोए, निंदा करे सो हमारा मीत। निंदक माए हमारा चीत, निंदक सोजो निंदा हो रे। हमारा जीवन निंदक लो रे, निंदा हमरी प्रेम प्यार। निंदा हमारा करे उधार, जन कबीर को निंदा सार। निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो, तरन तरन राम राया हरहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक पै है, एक के देखत मन पतिया ही। जब बुध होती तब बल कैसा, अब बुध बल ना खटाई। कहे कबीर बुध हर ली मेरी, बुध बदली सिद्ध पाई गौड़ी। खट नेम कर कोठड़ी बंधी, बस अनूप बीज पाई। कुंजी कुल्प प्राण कर राखे, करते बार न लाई। अब मान जागत हो रे पाई, गाफल हुए के जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ, पंच पैरुआ दर में रहते। इनका नहीं पतियारा, चेत सुचेत चेत हुए रहो। तौले प्रगास उजारा, नाव कर देख जो कामन फूली। बस अनूप न पाई, कैत कबीर नवे कर मुसे। दसवें तत् सुमाई गौड़ी, माई मुहे अवर ना जान्यो आना ना। थे सुनकाद जस गुण गावे, तस बसे मोरे प्राणा ना। रहाओ हृदय प्रगास ज्ञान गुरगमत, गगर मंडल में ध्याना ना। बिखे रोग पय बंधन पागे, मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमतरत जान मान प्राप्त, दूसर मने ना आना ना। चंदन बाज पय मन बासन, त्या कट्यो अब माना ना। जो जन गाये त्याय जस ठाकुर, तास प्रभु है थाना ना। ते बड़पा बस्यो मन जाके, कर्म प्रधान मथाना ना। काड़ सकत शिव सह प्रगास्यो, एक एक समाना ना। कहे कबीर गुर पेट महासुख, प्रमत रहे मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी बावन अखरी, कबीर जियो की एक ओंकार। सत नाम करता पुरख गुर प्रसाद, बामन अक्षर लो त्रय सब कस इन ही मागे। ए अखर खिर जाएंगे, ओ अखर इन मैं नागे। जहाँ बोलते अक्षर आवा, जय अबोल तय मन ना रखावा। बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लखे ना कोई। अल्ले लहो तो क्या कहो, होता को उपकार। बड़क बीज मैं रव रहे हो, जाको तीन लोग विस्तार। अले लहंता पेद शय, कश कह पायो पेद। उल्ट पेद मन पेद्यो, पायो अपंग अशेद। तुर्क तरीकत जानिए, हिंदू वेद पुराण। मन समझावन कारण, कशुक पढ़िए ज्ञान। ओंकार आदि मैं जाना, लिखर मेटे ताए न माना। ओंकार लखे जो कोई, सोई लख मिटना ना होई। कक्का किरण कमल में पावा, सद विकास संपट नहीं आवा। हर जे तह कुमरस पावा, आके कहा कह का समझावा। खखा ए खोड़ मन आवा, खोड़े शाड़ ना दैद सतावा। खसमे जान खिमा का रहे, तो होए नख्याओ अखय पदल है।

अर्ध करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंभ, अहिंस अखंड सो रही जाए, तो अनहद बेण सहज मय बाय, सोमवार सज अमृत चरे, त्यागत बेग सगल बिखरे।

तरखर रिसे गैराय बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल में हर का वास गुर मिल दो एक सम तरे उर्द पंकले सूदा करे बृहस्पति दिखिया देव बिहाय तीन देव एक संगलाय तीन नदी ते त्रिगुटी नागे अंस कसमल तो वे नागे सुकृत सहारे तो ए व्रत चढ़े अंत ने आप स्यों लड़े सुरखी पंचो राखे सब तो दूजी दृष्टना पैसे कबे थावर थिरकर राखे सोए जोत दी वट्टी कड़ में जोए बाहर पीतर पया परगास तब हुआ सगल कर्म का नास जावला कट में दूजी आन तौलो महल ना लाभे जान रमत राम स्यों लागो रंग कहे कबीर ता निर्मल अंग राग गौड़ी चेती बाणी नाम दियो जियो की एक ओंकार सदगुर प्रसाद देवा पान तारियले राम कहत जन कसना तरे रघाओ तारियले गनका बिन रूप कुबजा ब्याल अजामल तारियले चरण बदक जन तेऊ मुक्त पहे औ बल बल जिन राम कहे दासी सो जन बिदर सुदामा उग्रसैन को राज दिए जापहीन तपहीन कोलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी तेऊ तरे राग गौड़ी रविदास जी के पदे गौड़ी गुवारेरी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोत सोज दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभांति राम गुसैया जी के जीवना मोहे नाम सारो मैं जन तेरा रहाओ मेरी हरो विपत जन करो सुपाई चरण ना छाडो शरीर कल जाई कहो रविदास परो तेरी सांभा बेग मिलो जन करना बिलंबा बेगमपुरा सहर को नाओ दुख अंधो नहीं तेठाओ ना तस्वीस खिराज ना माल खौफ ना खता न तरस जवाल आ मैं खूबतन गए पाई ऊहा खैर सदा मेरे भाई रहाओ कायम दायम सदा पातशाही दो मना सेम एक सो आही आबादान सदा मशहूर ऊहा गनी बसे मामूर त्यों त्यों सैल करे जो पावे महरम मैल न को अटकावे कह रविदास खरा चुमारा जो हम सहरी सो मीत हमारा एक ओंकार सदगुर प्रसाद गौड़ी बैरागन रविदास जीओ काट आव काट डूगर कणा एक निर्गुण बैल हमार परमैये सो एक बेन

आपे नदर करे जो कुछ करना सो कर अवरण करना जाई जैसा वरते तैसो कही है सब तेरी वड्याई काल कलवाली माया मद मीठा मन मतवाला तीवतर है आपे रूप करे बो भांति नानक बपड़ा एव कह आसा महला पहला वाजा मत पखाव जपाओ होए आनंद सदा मन चाओ एहा भगत एहो तब ताओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पूरे ताल जाने साला और नचना खुशियां मन माह हरहाओ सत संतोख वजे दोए नाल पैरी वाजा सदा निहाल राग नादनी दूजा पाओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पौ फेरी होवे मन चीत बहिंदिया उठदिया नीता नीत लेटन लेट जाने तन स्वाह ए तरंग नाचो रख रख पाओ।

का बंद खीन खराब होवे नित कंद खान जीवन की बहुती आस लेखे तेरे साध गिरास ऐस अंधले दीपक दे भौजल डूबता चिंत करे कहे सुने जो माने नाव।

नदर करे इतना सदगुरु मिले परमत नानक पहुंच जलता रहे। आसा मगला पहला पंच बदे दुध बिन तेन पंख बिन पंखी जल बिन उदबुज कामना ही क्या सुल्तान सलाम विहूणा अंधी कोठी तेरा नाम नाही की विसर है दुख बहुता लागे दुख लागे तू विसर नाही हरहाओ अखी अंध जीव रस नाही कन्नी पौन ना वाजे चरणी चले पजूता आगे विण सेवा फल लागे अखर देख बाग पै चोखी सिंचित पाओ करेगी सब ना फल लागे नाम एको बिन कर्मा कैसे लेगी जेते जी तेते सब तेरे विण सेवा फल किसे नाही दुख सुख पाना तेरा होवे विण नावे जियो रहे नाही मत विच मरण जीवन होर कैसा जा जीवा ता जूत नाही कहे नानक जीवाले जिया जय पावे है राख तुही आसा महला पहला काया ब्रह्मा मन है तोती ज्ञान जिनेऊ ध्यान कुछ पाती हर नामा जा जा चौनाओ गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ पांडे ऐसा ब्रह्म विचार नामे सोच नामो पढ़ो नामे चज आचार रखाओ बार जनेऊ जिचर जोत है नाल तोती टिक्का नाम सुमाल ऐथे उथे निभगी नाल विण नावे होर कर्म ना पाल पूजा प्रेम माया परजाल एको वेखो अवर ना पाल इन्ने तत गगन दा द्वार हर मुख पाड़ पड़े बीचार भोजन पाओ परम पाओ पागे पारू रश बचोर ना लागे तिलक ललाट जाने प्रावेक बूझे ब्रह्म अंतर बवेक आचारी नहीं जीत्या जाए पाड़ पड़े नहीं कीमत पाए अष्टदशी चौपेद न पाया नानक सदगुर ब्रह्म दिखाया आसा महला पहला सेवक दास भगत जन सोई ठाकुर का दास गुरमुख होई जिन सिर साजी तिन फुन गोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई साच नाम गुर शब्द विचार गुरमुख साचे साचे दरबार रखाओ सच्चा अर्ज सच्ची अरदास मैलनी खजम सुने साबास सच्चे तख्त बुलावे सोए देव डयाई करे सो होए तेरा तान तू है दी बाण गुर का शब्द सच निशान मन ने हुक्म सो प्रगट जाए सच निशाने ठाक न पाए पंडर पढ़े वखाने वेद अंतर अवस्त न जाने पेद गुरबिन सूझी बूझ न होए साचा रवर या प्रसोए क्या हो अखा अख वखाणी तू आपे जाने सर्ब वडाणी नानक एको दर दी बाण गुरमुख साजता गुजरान आसा महला पहला काची गागर दे दुखेली उपजे बिन से दुख पाई यो जग सागर दुत्र क्यों तरीये बिन हर गुर पार न पाई तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे तुझ बिन अवर ना कोई हरे सर्बी रंगी रूपी तू है तेस बगसे जिसे नदर करे रखाओ सास बुरी करम वास न देवे फिर स्यों मिलन ना दे बुरी सखी सजनी केखों चरण सरेव हर गुर कृपा ते नदर तरी आ विचार मार मन देखया तुम सामीत न अवर कोई ज्यों तू रख तिभगी रहना दुख सुख देवे करे सोई आसा मनसा दऊ बिनास्त त्रिगुण आस निरास पई तुरी अवस्था गुरमुख पाई है संत सभा की ओट लगी ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप जिस हर हृदय अलख पेव नानक राम नाम मन रत गुरमत पाए सहज सेवा आसा महला पहला पंच पदे मोह कुटुंब मोह सवकार मोह तुम तजो सगल वेकार मोह अर परम तजो तुम वीर साच नाम हृदय रवे शरीर रहाओ सच नाम जा नवन दपाई रोवे पूतना कल पैमाई एत मुए डूबा संसार गुरम कोई उतरे पार एत मुए फिर जूनी पाहे मोहे लागा जम पुर जाहे गुर दिखिया ले जब तब कुमागे ना मो टूटे न थाए पाहे नदर करे ता यो मो जाए नानक हर्षों रह सुमाए आसा महला पहला
ਆਪ ਕਰੇ ਸੱਚ ਅਲਖੇ ਪਾਰ। ਹੋ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ, ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਹੜ ਕੀਤੇ ਅੰਤਵ ਗੋਵੇ ਰਖਾਓ। ਮਨ ਮੁਕੀ ਮਤ ਕੂੜ ਵਿਆਪੀ, ਬਿਨ ਖ ਸਿਮਰਨ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪੀ। ਦੁਰਮ ਤਿਆਗ ਲਾਹ ਕਿਛ ਲੇਵੋ, ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਅਲਖ ਪੇਵੋ। ਐਸਾ ਹਮਾਰਾ ਸਖਾ ਸਖਾਈ, ਗੁਰ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਈ। ਸਗਲੀ ਸੌਂਦੀ ਤੋਟਾ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਪਾਵੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪ ਦੇ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਪੁਕਾਰੀ। ਜਾਂ ਪੰਚ ਰਾਸੀ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ। ਘੁੰਗਰੂ ਵਾਜੇ ਜੇ ਮਨ ਲਾਗੇ, ਤਉ ਜਮ ਕਾਂ ਕਰੇ ਮੋਸੂ ਆਗੇ ਰਹਾਓ। ਆਸਨ ਰਾਸੀ ਤਉ ਸੁਨਿਆਸੀ, ਜਾਂ ਜੈ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਕਾਇਆ ਭੋਗੀ। ਦਇਆ ਦਿਗੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਆਪ ਮਰੇ ਅਵਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਇਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੇਸ ਬੋ ਤੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਚੋਜ ਨ ਤੇਰੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਏਕ ਨ ਪਰੀਆਂ ਗੁਣ ਕਰ ਤੋਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਸੋ ਜਾਗ ਹੋ ਨਿਸ ਪਰ ਸੋਵਾਂ, ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ। ਸੋ ਜਾਗ ਹੋ ਨਿਸ ਪਰ ਸੋਵਾਂ, ਰਹਾਓ। ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਸੇਜੇ ਆਵਾ, ਆਗੇ ਸਹਿ ਭਾਵਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾਵਾ। ਕਿਆ ਜਾਨਾ ਕਿਆ ਹੋਏ ਗਾਰੀ ਮਾਈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਹਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਚਾਖਿਆ ਮੇਰੀ, ਤਿਸਨਾ ਬੁਝਾਨੀ। ਗੈਸੋ ਜੋਗਨ ਤਨ ਪਛਤਾਨੀ, ਅਸੇ ਜਾਗੋ ਆਸ ਪਿਆਸੀ। ਪਈ ਲੈ ਉਦਾਸੀ ਰਹੋ ਨਿਰਾਸੀ, ਰਹਾਓ। ਹੋ ਮੈਂ ਖੋਏ ਕਰੀ ਸੀ ਗਾਰ, ਤੋ ਕਾਮਣ ਸੇਜੇ ਰਵੇ ਪਤਾਰ। ਤੋ ਨਾਨਕ ਕੰਤੇ ਮਨ ਪਾਵੇ, ਛੋੜ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਖਦਮ ਸੁਮਾਵੇ। ਰਹਾਓ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੇਵ ਕੜੇ ਤਨ ਖਰੀ ਇਆਣੀ। ਤੇ ਸਾਇਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਏਕ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਈ, ਰਹਾਓ। ਸੋ ਰੜੇ ਤਨ ਸਾਚ ਪਛਾਣਿਆ, ਸਹਿ ਸੁਪਾਏ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਾਣਿਆ।

सबना का सोई, जे सकता सकते को मारे ता मन रोस न होई। रहाओ सकता सियो मारे पै वग कसमे सा पुरसाई, रतन विगाड़ भगोए कुत्ती मोया सार न काई। आपे जोड़ विछोड़े आपे वेख तेरी वड्याई, जे को नाव तराए वड्डा साध करे मन पाणे। खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने, मर मर जीवे ता किस पाए नानक नाम खाने। अराग आसा कर दूजा महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर दर्शन पावे वडपाग गुर के शब्द सच्चे बैराग, खड़ दर्शन वरते वरतार गुर का दर्शन अगमे पार। गुर के दर्शन मुक्त गद होए साचा आप वसे मन सोए। रहाओ गुर दर्शन उदरे संसारा, जे को लाए पाओ प्यारा पाओ प्यारा लाए विरला कोए। गुर के दर्शन सदा सुखोए, गुर के दर्शन मुख द्वार सदगुर सेवे प्रवास आधार। निगुरे कौ गद काई नाही अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर के शब्द सुख सांत शरीर गुरमुखता को लगे ना पीर। जम काल तिन नेड़ न आवे नानक गुरमुख साज सुमावे।

तुम है ब्राह्मण जाना, पेतदार तू ही है पछताना। ऐसे ब्राह्मण डूबे पाई, निरापराध चितवे बुरे आई, रहाओ अंतर।

तारी सगल जगत गृह ऐसा गए सुंदर लाल प्रभावा ता सदा निहाल बिंजन भोजन अंग प्रकार रंग तमासे बहुत विस्तार राज मिलख अर बहुत फुरमाइस मन ही त्रापे तृष्णा ना जायस बिन मिलबे इहो दिन ना बिहावे मिले प्रभु ता सब सुख पावे खोजत खोजत सुनी ए सोए साध संगत बिन तरियो ना कोए जिस मस्तक भाग तिन सदगुर पाया पूरी आसा मन तृप्ताया प्रमिलया ता चूकी डंजा नानक लद्दा

बिगड़ रूप मन में अवमान तो निस्रूप सुजान बचकन आत गर्भ मुए फाकी तू रहाओ असूची तेरी पाकसाल कर स्नान पूजा तिलक लाल गली गर्भ मुख गोवे ज्ञान साबित खोई लोभ स्वान कापर पैरे भोगे भोग आचार करे शोभा मैं लोग चुआ चंदन सुगंध विस्तार संगी खोटा क्रोध चंडाल अवर जोन

साथ रब रहया प्रभ सबके साथ पूरा गोर पूरी बंत बनाई नानक भगत मिली वड्याई आसा महला पंजवा गुर के शब्द बनावो इहो मन गुर कर दर्शन संचो हर तन।

साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा मोहल्ला पंजवा, काम क्रोध माया मद मस्तर, ए खेलत सब जुए हारे। सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने ग्रह पीतर वारे। जन्म मरण चूके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल। गुर पूरे लेखिन में तारे, रहाओ सबकी रेन होए रे मनुआ। सगले दिसे मीत प्यारे, सब मध्य रव्या मेरा ठाकुर। दान देत सब जी सम्हारे, एको एक आप एक एक, एक, एक सगला पासारे। जप जप होए सगल साध जन, एक नाम तै बहुत उधारे। गैर गंभीर बेंत गुसाई, अंत नहीं किस पारा वारे। तुमरी कृपा ते गुण गावे, नानक त्याए तै प्रभु को।

पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े कर्म धर्म जुगत बहु करता करणे हार न जाने उपदेश करे आप ना कमावे तत् शब्द ना पछाने नांगा आया ना गोजासी ज्यो हस्ती खाक शाने संत सज्जन सुनो सामीता झूठा इओ पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खाब खा मोए गवारा।

परम मोह त्रो सब निकस जबका दर्शन पाया वर्तन नाम नानक सच कीना हर नामे रंग समाया आसा महला पंजवा जन्म जन्म की मलक होवे प्राई अपना की तापावे ईहा सुख नहीं दर गए टोई जम पुर जाए पचावे निंदक अहला जन्म गवाया पहुंच न सके काहू बाते आगे ठौर न पाया रहाओ किरत पया निंदक बपरे का क्या ओ करे बिचारा तहां बेगूता ते कोई न रखे ओ किस पे करे बुकारा निंद की गत तथु नागी खसमे ए वे पाना जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुख माना संता टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई कहो नानक संत खरा राखे निंदक दिगे रोढ़ाई आसा महला पंजवा बाहर तोय अंतर मल मैला दोए ठौर अपने खोए ईहा काम क्रोध मुए व्यापया आगे मुस मुस रोए गोंद पजन की मत है होरा वर्मी मारी साप ना मरी नाम न सोई डोरा रहाओ माया की किरत छोड़ गवाई भक्ति सार ना जाने वेद शास्त्र को तरकन लागा तत् योग ना पछाने उगर गया जैसे खोटा टबुआ नदर सरापा आया अंतर जामी सब के जाने उसते कांश पाया कूड़ कपट बांच ने मुनियादा बिनस गया तद काले सत सत सत नानक कहया अपने हृदय देख समाले आसा महला पंजवा उदम करत होवे मन निर्मल नाचे आप निवारे पंच जनाले वस गद रख मन में एक अंकारे तेरा जान नृत करे गुण गावे रबाब पखावज ताल कुंगुरु अनगद शब्द वजावे रखाओ प्रथमे मन पर बोधे अपना पाछे अवर री जावे राम नाम जप हृदय जप मुक्ते सगल सुनावे तर संग साधु चरण पखारे संत तूर तन लावे मन तन अर्प तरे गुर आगे सत पदार्थ पावे जो जो सुने पिखे लै सरदा ताका जन्म मरण दुख पागे ऐसी निरत नरक निवारे नानक गुरमुख जागे आसा महला पंजवा अदम चंडाली पई ब्रह्मणी सूदी ते सृष्टाई रे पाताली आकाशी सखनी लैबर बूजी खाई रे घर की बलाई अबर सखाई मूसा देख डराई रे अज के वसगुर कीनो केहर कूकर तने लगाई रे रहाओ बाज तूनिया छपरा थामिया नी करया कर पाया रे बिन जड़िए ले जड़ो जड़ावा हेवा अचरज लाया रे दादी दाद ना पहुंचन हारा टूपी निरनो पाया रे मार दुलीचे बैठी ले मृतक नयन दखालन ताया रे सोई अजान कहे मैं जाना जानन हार नशाना रे कहो नानक गुर अम्यो पी आया रसक रसक बिगसाना रे आसा महला पंजवा बंधन काट बसारे औगुण अपना बिरद सम्हारिया होए किरपाल माधपित न्याई बारक ज्यो प्रद पारिया गुरसिख राखे गुर गोपाल काढ़ लिये महापवजल ते अपनी नजर निहाल रखाओ जाके सिमरन जम ते छुटिए हलत पलत सुख पाईए साध गराज जपो जप रसना नीत नीत गुण गाईए भगत प्रेम परम पद पाया साध संग दुख नाठे छिजे न जाए इह पौ ना व्यापे हर तन निर्मल गाठे अंतकाल प्रपय सहाई एत उतरा कनहारे प्राण मीत हीर तन मेरे नानक सब बलिहारे आसा महला पंजवा जा तू साहेब ता पौ केहा हौ तुद बिन किसा लाही एक तू ता सब किश है मैं तुद बिन दूजा नाही बाबा बिग देख्या संसार रख्या करो गुसाई मेरे मैं नाम तेरा आधार रहाओ जाने बिरथा सभा मन की और किस पे आग सुनाई है विण नावे सज बौराया नाम मिले सुख पाई है क्या कहिए किस आग सुनाइए ये कहना सो प्रभु जी पास सब कीता तेरा वर्त सदा सदा तेरी आस जे दे वड्याई ता तेरी वड्याई एत ओत तुझे ते आओ नानक के प्रसदा सुखदाते मैं तान तेरा एक नाओ आसा महला पंजवा
अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर इहो महारस जने पियो। जन्म जन्म चूके पै पारे दुर्त बिनास्यो परम बियो। दर्शन पेखत मैं जियो सुनकर भजन तुम्हारे सतगुर। मंत्र मेरा ठार थियो रहाओ तुमरी कृपा ते पयो साध संग। यो काय तुम आप कियो दृढ़ कर चरण गए प्रतुमरे। है जे विखिया पई कियो सुख निधान नाम प्रतुमरा। यो अविनाशी मंत्र लियो कर कृपा में सतगुर दीना। ताप संताप मेरा बैर गियो तन सो मानस देही पाई।

और पूरे के चरण गए, और जन्म के पाप लहे, रतन जन्म तो सबल पया, कहो नानक प्रभु करी माया, आसा महला पंजवा। सतगुर अपना साध सदा सुमारे, गुर के चरण के संग चारे, जाग रे मन जागन हारे, बिन अवर न आवस कामा, झूठा मोह मिथ्या पसारे, रहाओ गुर की बाणी सो रंग लाए, गुर किरपाल होए दुख जाए, गुर बिन दूजा ना गीताओ, गुर दाता गुर देवे नाओ, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप, आठ पैर नानक गुर जाप, आसा महला पंजवा। आपे पेड़ विस्तारी साख, अपनी खेती आपे राख, जद कद पेखो एक ओगी, कड़कड़ अंतर आपे सोई, रहाओ आपे सूर किरण विस्तार, सोई गुप्त सोई आकार, सरगुण निर्गुण थापे नाव, दो मिल एक की नो ठाव, कहो नानक गुर ब्रह्म पौ खोया, अंध रूप सब नयन अलोया, आसा महला पंजवा। उगत सियानप किशु ना जाना, दिन रहन तेरा नाम खाना, मैं निर्गुण गुण ना ही कोय, तरन करावन हार प्रसोय, रहाव मूर्ख मुगध अज्ञान विचारी, नाम तेरे की आस मन तारी, जब तब संजम तर्म न साधा, नाम प्रभु का मने अराधा, किशु ना जाना मत मेरी तोरी, बिनवत नानक ओड प्रातोरी, आसा महला पंजवा। हर हर अखर दोए ए माला, जबत जबत पै दीन दयाला, करो बेनती सदगुर अपनी, कर कृपा रखो शरणाई, मोको देव हरे हर जपनी, रहाओ हर माला और अंतर तारे, जन्म मरण का दुख निवारे, हृदय संभाले मुख हर हर बोले, सो जान ए तुत कते न डोले, कहो नानक जोरा चय नाय, हर माला ताके संग जाए, आसा महला पंजवा। जिसका सब किसका होए, हे जन लेपना व्यापे कोए, हर का सेवक सदगी मुक्ता, जो करे सोई फल जन के, आत्म निर्मल दास की जुगता, रहाव सगल त्यागर सरणी आया, हे जन काम व्यापे माया, नाम निधान जाके मन माहे, जिसको चिंता सुपने नाहे, कहो नानक गुर पूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया, आसा महला पंजवा। जो सो प्रसन्न होयो प्रा मेरा, ता दुख परम कौ कैसे नेरा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मोय निर्गुण कौ लिहो उधारी, रहाओ मिट गया दुख सारी चिंता, फल पाया जब सदगुरु मंता, सोई सत सत गए सोए, सेमर सेमर रख कंठ परोए, कहो नानक कौन ओ कर्मा, जाके मन वसिया घर नामा, आसा महला पंजवा। काम क्रोध अंकार विभूते, हर सिमन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते, रहाओ मोह परम्बो जोन पवाया, अस्तर भगत हर चरण ते आया, बंधन अंध कूप ग्रह मेरा, मुक्ते संत बुझे हर नेरा, कहो नानक तो प्रसरणाई, ईहां सुख आगे गद

नरक सुर्ग फिर अवतार कहो नानक जो लाया नाम सबल जन्मता का प्रवान आसा मोहल्ला पंजवा सोए रही प्रभ खबर न जानी और पया बौर पछतानी प्रे प्रेम सहज मन अंध तरोरी प्रभ मिलबे की लालसा ताते आलस कहां करोरी रहाओ कर्म अमृत आन निसारयो खिसर गयो तूम पर डारयो साध मोहला दी अंकारे दोष नहीं प्रभ करने हारे साध संग मिटे परम अंधारे।

सदा प्रफुल्ल काट काट संपट है रे जाका अपाग सभा संघ है साधा आरती कीर्तन सदा आनंद महिमा सुंदर सदा बेअंत जिसे प्राप्त तिस ही लेना संत चरण ओ आयो सरना आचड़े उखर साल ग्राम।

ऐसी स्त्री एक राम उपाई उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई रहाओ पाए ठगौरी सब जग जोया ब्रह्मा विष्णु मां देव मोया गुरमुख नाम लगे से सोया वर्तनेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे ये सदगुर की सरना माया मोहे सबो जग बाधा हमे पचे मनमुख मुँह राखा गुरु नानक बां पकड़ हम राखा आसा महला पंजवा सर्व दुख जब श्रे स्वामी ईगा उहा कामना प्राणी संतृप्ता से हर घर त्याय हर कृपा अपने नाय लाए सर्व सुख पर तुमरी रिजाए रहाओ संग होवत को जानत दूर सो जन्म मरता नित नित चूर जिन कछ दिया ते चित तनाहे मां बिखिया मैं दिन रहन जाहे कहो नानक प्रसिमरो एक गद पाईगे गुर पूरे टेक आसा महला पंजवा नाम जपत मन तन सब हरिया कल मर दोख सगल पर हरिया सोई दिवस पला मेरे पाई हर गुण गाए परम गद पाई रहाओ सब जना के पूजे पैर मिटे उपद्रे मन ते बैर गुर पूरे मेल चगर चुकाया पंच दूत सब वस गद आया जिस मन वस्या हर का नाम नानक इस ऊपर कुरबा।

सर्व सुख पावे, आवर काहू पै बौड़ ना जावे, सदा आनंद आनंदी साहेब, गुण निधान नित नित जापिए, बलिहारी ते संत प्यारे, जिस प्रसाद प्रभ मनवासी है रहाओ, जाका दान मिखूटे नाही, भली भांत सब सह समाही, जाकी बख्श न मेटे कोई, मन वासाई गे सचा सोई, सगल समग्री ग्रे जाके पूरन, प्रभ के सेवक।

के अनटेक है, सो जानो काचा रहाओ, तेरा हुक्म अपार है, कोई अंत न पाए, जिस गुरपूरा पेड़ सी सो चले रह जाए, चितराई सियाणपा किते काम न आई है, तुठा साहेब जो देव है सो ही सो पाई है, जे लह कर्म कमाई है ई पवे ना बंधा, जन नानक कीता नाम तार होर छोड़िया तंदा, आसा महला पंजवा सर सुखा में पालिया, हर जेवड़ ना कोई गुर तुठे ते पाई है, सच साहेब सोई बलिहारी गुरे अपने साध।

ताई अपने होवे अंधकणा मन तन जापने रहाओ। बिंदक गाल सुनी सचे तिस तनी सुखी हूँ सो पाए माए ना कीम गणी नैन पसंदो सोए एक मुस्ताक पही मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई बेक तेव संसार हब्बा हूं बहारा नानक का पात साहो जिससे जहारा आसा महला पंजवा लाग भगत आराध जब ते पियो पियो कवन जूत में लावो निर्गुण बखई जियो तेरी टे गोविंद गोपाल दयाल प्रभ तू सबना के नाथ तेरी सिट सब रहाओ सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर ना बिहूनड़िया से मरन वेसूर वेसूर दास दासन पाए मिटिया तिना गौन विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन जैसे पस हरे आओ तैसा संसार सब नानक बंधन काट मलाव आ प्रभ आसा महला पंजवा हब्बे थोक विसार इको ख्याल कर झूठा लाए गुमान मंत्र अर्प तार आड़ पैर सार आगे सिरजनहार तू जीवा तेरी दात किरपा करो मुंह रहाओ तोई कम कमाए जित मुख उजला तोई लगे सच जे तू दे अला जो न टहंदो मूल सो कर रस कर इको चित वसाए कदे ना जाए मर तिना प्यारा राम जो प्रापाणिया गुर प्रसाद अकथ नानक वखाणिया आसा महला पंजवा जिन्ना ना विसरे नाम से कनेहा खेद न जानो मूल साई देया मन तन होए निहाल तुम संग पेटिया सो पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ जेते खंड ब्रह्मंड उधारे तिनखे जिन मन मुठा आप पूरे भगत से जिसनु मन्ने आप सोई मानिए प्रगट पुरख प्रवान सब ठाई जानिए दिन सरैन आरात संभाले साहा सहा नानक की लोचा पूर सचे पातशाह आसा महला पंजवा पूरया सर्वठाए हमारा खसम सोए एक साहब सिर छत दूजा ना है कोय जो पावे त्यों राख रखण हारिया तुय बिन अवर न कोय नदर निहारिया रहाओ प्रद पाले प्रवे आप धड़कर सारिये जिस मन उठाए आप तिस नाम सारिये जोज करे सो आप अपन पाणिया भगता का सहाई जुग जुग जानिया जप जप हर का नाम कदे ना चूरिए।

जब जब जीवा नाम होवे अंधकणा, मिथ्या मोह संसार झूठा विसना, चरण कमल संग ने हो किने विरले लाया, तन सुहावा मुख जिन हर त्याया, जन्म मरण दो काल सिमरत मिट जावई, नानक कहे सुख सोए जो प्रापावई, आसा महला पंजवा आवो मीत एकत्र होए, रस कस सपुंच अमृत नाम हर हर जपे दिल पापा मुंच, तत विचारो संत जनो ताते बिघन न लागे, खीन पय सब तस्करा गुरमुख जन जागे, रहाओ बुद्ध गरीबी खर्च लेहो होमे बिख जा रहो, साचा हट पूरा शब्द वखर नाम वापारो, जियो पिंड तन अर्पया सेई पतवंते, आपनड़े प्रापाणिया निदकेल करंते, दुरमत मद जो पीवते बिखली पद कमली, राम रसाण जोरते नानक सच अमली, आसा महला पंजवा उदम किया कराया, आरंभ रचाया नाम जपे जब जीवना, गुर मंत्र दृढ़ाया, पाए परे सदगुरु कै जिन परम बदारिया, कर कृपा प्रवे अपनी फिर सा सवार रहाओ, कर गए लीने अपने सज हुकम रजाई, जो प्रदित्ति दात सा पूर्ण वड़ियाई, सदा सदा गुण गाई है जप नाम मुरारी, नेब नभायो सदगुरु प्र कृपा तारी, नाम तन गुण गाओ लाभ पूरे गुर दिता, वणजारे संत नानका प्रसाओ अमिता, आसा महला पंजवा जाका ठाकुर तुही प्रभ ताके वडभागा, ओ सुहेला ससुगी सप्रम पो पागा, हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा पारा, करण करामन सगल बिद सो सदगुरु हमारा, रहाओ दूजा नाही और को ताका पो करिए, गुर सेवा महल पाईए जग दुत्तर तरीये, दिट तरी सो पाईए मन माए निधाना, जाको तुम कृपाल पये सेवक से परवाना, अमृत रस हर कीर्तनो हो विरला पीवे, वजो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवे, आसा महला पंजवा जा प्रभ की हो चेरली, सो सबते ऊंचा सब कुछ ताका कांडिये, थोड़ा अरमूचा जी प्राण मेरा तनो साहिब की मनिया, नाम जिसे के उजली ते दासी गनिया, रहाओ वे प्रभु आनंद में नव मानक हीरा, रजी ताई सदा सुख जाका तू मीरा, सखी सहेरी संग की सुमत दृढ़ाओ, सेवो साधु पाओ कर तौ निधघर पाओ, सगली दासी ठाकुर सब कहती मेरा, जिसे सिगारे नानका तेस सुखे बसेरा, आसा महला पंजवा संता की होए दासरी, हे उचारा सिखरी थल गुणा गुण उत्तमो परता दूर ना पेखरी, यो मन सुंदर अपना हर नाम जीठे रंगरी, त्याग स्यान बचातरी तू जान गोपाले संगरी, रहाओ परता कैसो मानिए तो सीगार बनाएरी, दूजा पाओ वसारिये क्यों तंबोला खाएरी, गुर का सब कर दीप को ए सदकी सेज बिछायरी, आड़ पैर कर जोड़ रहो हो फेटे हर रायरी, तेसी चज सीगार सब साई रूप अपार री, साई सुहागण नानका जो पानी करतार री, आसा महला पंजवा।

तद गीते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जावला हुक्मना बूझता तभी लो दुखिया गुरम हुक्म पछाणिया तभी ते सुगिया ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमे बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ गरे निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने साध सद बल जाओ गुरु विटो हो वारे जिस मिल सच सुवाओ रहाओ सागन अपसागन किसको लग जे चीत न आवे।

मार्ग पंथ सुम्हारी ना दृढ़ गुरमन में दिया मोरी तसा बुझारी बिन पी गावो रह नी गावो गावो सास सास रसनारी सतसंगत में विसास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक कहो त्यो दान दियो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवणी कथा नैन दर्श देखो।

बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। मां बिखादी दुष्ट अपवादी ए पुनीत सिंगारे, जन्म पवंते नरक पड़ंते इनके कुल उधारे। कोई ना जाने कोई ना माने।

मो कुटुंब बिखे रसमाते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ शोभन आनंद उलास माने मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संग तेल मर्म ना लहे कर कृपा रखे सत्संग नानक शरण आहे आसा महला पंजवां ए पदे ओहा प्रेम प्री हरहाओ कनक मानक गज मोती न लालन नह नहा नहीं राजन पागन हुकुम न साधन किश किश न चाही चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पागी नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री आसा महला पंजवां गुरे दिखायो लोए न रहाओ ईते ऊते काट काट काट काट तू ही मोहना कारण करना तारण करना एकै एकै सोयना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवां हर हर नाम अमोला ओ सहज सुहेला हराओ संग सहाई छोड़ न जाई ओ अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक ओ हर का चोला आसा महला पंजवां अपनी भगत निभागे ठाकुर आयो आहे हरहाओ नाम पदार्थ हुए सकारत हृदय चरण बसागे

आया सेवक माया गौन रस रस गावे एक है अस दर्श पे अस आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम त्यावो हृदय बसाओ जिबन को नाही प्रसरणी आईगे सर्व फल पाई है सगले दुख जाही जीन को दाता पुरख बिधाता नानक कट कट आही आसा महला पंजवा हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम ते आवे सर्व फल पावे सो जन सुखिया हुआ राज कहावे हौ कर्म कमावे बाध्यो नलनी प्रंसुआ कहो नानक जिस सतगुर पेटिया सो जन ने चलतिया आसा महला पंजवा कर चौदवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओह निहो नवेला अपने प्रीतम स्यों लाग रहे रहाओ जो प्रापावे जन्म न आवे हर प्रेम भगत हर प्रीत प्रचय प्रसंग मिलीजे यो मन दीजे नानक नाम मिले अपनी दया करो आसा महला पंजवा मिल राम प्यारे तुम मिल तीरज को ना करे रहाओ सिमरत शास्त्र बहुकर्म कमाए पर तुमरे दर्श बिन सुख नाही वर्त नेम संजम कर थाके नानक साध सरण प्रभु संग वस आसा महला पंजवा तार पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद विकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे पकर केस जम उठारियो तही कर जावे लोभ विखिया विखे लागे हर विदचित दुखाही खिर पंगना के मान माते असुर जाने नागी रहाओ वेद सतर जन पुकारे सुने नाही डोरा निपत बाजी हार मुका पछतायो मन फोरा टान सगल गैर वजे परया दीवान लेखे ना परे जे कार्ज रहे उल सोए कामना करे ऐसो जग हुए गुरे दिखायो तो एक कीर्त गाया मान तान असयान सर नानक आया आसा महला पंजवा बापार गोविंद नाय साध संत मनाए प्रे पाए गुण गाए पंच नाद तूर बजाए रखाओ कृपा पाए सह जाए दर्शाए अबरत्या गोविंद स्यो संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सह जाए मन धान पाए सब तजी मन की काम करा चेर चेर चेर चेर पया मन बहुत प्यास लागी हर दर्शनों दिखावो मुझे तुम बतावो नानक दीन शरण आए गल लाए आसा महला पंजवा।

अनप्राणः रवयो सर्वथानः लयो जं पयानः पायो पेड़ थानः तो चुकी सगल कान लैनो जिस मथानः पय पावक पार प्राणः निकर तिसे थानः हार रस रसे मानः लाती तिस पुगानः नानक सह सुमायो रे मना आसावरी महला पंजवा हर हर हर गुणीगा जपिगे सहज तुनीगा साधु रसन पनीगा छूटन दिल सुनीगा पाइये वड पुन्नी मेरे मना रहाओ खोजे जन मुनीगा तरब का प्रतनीगा दुलभ कल दुनीगा दुख बिना सुनीगा प्रपूर्ण असनी मेरे मना मन सो सेविगे हा अलख अपेविगे हा ताशो प्रीत कर हा बिन सुन जाए मर हा गुरते जान्या हा नानक मन मान्या मेरे मना आसावरी महला पंजवा एका ओड गौ हा गुरता शब्द कहो हा आज्ञा सत सहो हा मने निदान लहो हा तुखे सुमाइगे मेरे मना रहाओ जीव तो मरेगा दुत्तर सो तरेगा सब की रेन होएगा निरपौ कौ सोएगा मिटे अंदेस्या संत उपदेस्या मेरे बना जिस जन नाम सुख हा तेस निकट ना कदे दुख हा जो हर हर जा सुनेगा सब कोत मनेगा सफल सो आया हा नानक प्रपाया मेरे मना आसावरी महला पंजवा मिर हर्ष गाइये हा परम पद पाइये हा हुआरा जो विदेगा ताको सगल सिद्धेगा अनदन जाग गया हा नानक बड़ भाग गया मेरे मना हरहाओ संत भगत होइये हा दुर्मद खोइये हा दास रेन होए हा व्यापे दुख ना कोए हा भगता शरण पर हा जन्म ना कदे मर हा अस्त्र से पएगा हार

मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरमुख राम नाम तृप्तस खोजत पाओ सहज हरे हरहाओ काम क्रोध मन मोह शरीर लब लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नामन साच पछाणे अंतर की गत गुरमुख जाने साज शब्द बिन मैल ना पछाणे निरंकार में आकार समावे अकल कला सच साच टिकावे सोनर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम सिया सुखदाता अनदन बाणी नामे राता मेरा प्रवलाए ता को लागे होमे मारे सब दे जागे ऐथे उथ सदा सुख आगे मन चंचल बिद ना ही जाने मन मुख मैल शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम खाणे हर जू आगे करी अरदास साधु जन संगत हुए निवास।

गर्व बन जाइए। मन मुखिया सिर मार वाद खपाइए, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाइए। साहिब हृदय वसाए न पछोताव ही, गुण गा बख्सनहार शब्द कुमाव ही। नानक मंगे सच गुरमुख खालिए, मैं तुझ बिन अवर न कोए नदर निहालिए। आसा महला पहला क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं कर बन हरियावला। सच टिके कर आए शब्द उतावला, जय देखा तै सोए अवर न जानिए। गुर की कार कुमाए मैल पछाणिए, रहाओ आ मिलावे सच ता मन पावई। चले सदार जाए अंक समावई, सच्चा साहिब मन वसे वस्या मन सोई। आपे दे वड्याईया दे तोट न होई,

साहिब मेरा एक है अवर नहीं पाई, कृपा ते सो पाया साते परताई, गुरबिन किरे ना पायो केती कहे कहाए, आप दिखावे वाटड़ी सच्ची भगत रड़ाए, मानमुख जे समझ आई है पी उजड़ जाए, बिन घर नाम न छूटती मर नरक समाए, जन्म मरे परमाई है हर नाम ना लेवे, ताकि कीमत ना पवे बिन गुर की सेव, जे ही सेव कराई है करनी पीसाई, आप करे किसे आखिए वेखे वड्याई, गुर की सेवा सो करे जिस आप कराए, नानक सिर दे छूटी है दरगे पद पाए, आसा मोहल्ला पहला रूड़ो ठाकुर मारो रूड़ी गुरबाणी, वड़े पाग सतगुर मिले पाई गए पद निर्बाणी, मैं ओल गिया ओल गी हम शोरू थारे, ज्यो तू राखे त्यो रहा मुख नाम हमारे, रहाओ दर्शन की प्यासा कणी भाणे मन पाई है, मेरे ठाकुर हाथ वड्याईया पाणे पद पाई है, साचो दूर न जानिए अंतर है सोई, जय देखा तैराव रहे किन कीमत होई, आप करे आपे हरे वेखे वड्याई, गुरमुख होए निहालिए क्यों कीमत पाई, जीम दया लाहा मिले गुरकार कमावे, पूर्व हो वे लिखिया ता सतगुर पावे, मानमुख तोटा नित है भरमे फरमाए, मानमुख अंत न चेतई क्यों दर्शन पाए, ता जग आया जानिए साचे लिवलाए, गुर भेटे।

नरात नाम अमोलह तू उत्तम हो नीत सेवक कांडिया नानक नदर करे हो मिले सच वांडिया आसा महला पहला आमन जाना क्यों रहे तो मिला होई जन्म मरण का दुख कणो निर्शेषा दोई बिर नावे क्या जीवना फिट त्रिगच तराई सदगुर साधना सेवया हर भगत ना पाई हरहाओ आमन जामन तौ रहे पाइये गुरपूरा राम नाम तन रास दे बिन से प्रमकूरा संत जिना को मिल रहे तान तान जस गाये आदि पुरख अपरंपरा गुरमुख घर पाए नडुए सांग बनाया।

दास तुम्हारे रिस प्राण आधारी ही ताके रूप न जागी लखने क्या कर आख विचारी तीन गुणा तेरे जोगी अंतर चारे तेरी आखाणी कर्म होवे ता परम पद पाइये कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आमन जानी जान तो पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरे ए आनी चारे वेद ब्रह्मे को दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताक हुकम ना बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगे जुगे के राजे किए गावे कर अवतारी इन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब सच्चा देता साच वखाणी जा को सच बुझावे अपना हैदे नाम सुमाणी आसा मोहल्ला तीजा सदगुर हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन वसाया शब्द चीन सदा सुख पाया सुन मन मेरे तत् ज्ञान देवन वाला शब्द जाने गुरमुख पाएगे नाम निधान रहाओ सदगुर भेटे की वडियाई जिर ममता अगन तृष्णा बुझाई सहजे माता हर गुण गाई बिन गुर पूरे कोई न जानी माया मोहे दूजे लोभानी गुरमुख नाम मिले हर बाणी गुर सेवा तपा सिर तब सार हर जीव मन वसे सब दुख विसारण हार दर साचे दिसे सत्यार गुर सेवा ते तिरपावन सोजी होए आप शान घर पावे सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गो सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखे उर तारे साची शोभा साज दुआरे सेवड़ भागी जे गुर सेवा लाए आन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उधरे कुल सबाए।

तन मन शीतल मुख उजले, फिर कह पाए प्यार से सुखाली पिर रवे, हमें तिसना मार कर कृपा कर आया गुर के हेत अपार, वर पाया सुहागणी केवल एक मुरार, सबे गुणे बगसाए लए ओन मिले मिलनहार, नानक आखण आखिए जे

ते आई है, ज्ञान प्रगट होए, ए मन मत जाने हर दूर है, सदा वेख अधूर, सद सुनदा सद वेखदा, शब्द रहा भरपूर रहाओ। गुरमुख आप पछाणिया, तिनी इक मन ख्याया, सदा रवे तेरे अपना, सच्चे नाम सुख पाया, ए मन तेरा को नहीं, कर वेग शब्द विचार, हर सरनाई पज पौ पाए मोह द्वार, सब सुनिए शब्द बुझिए, सच रखे लिवलाए, सब देखो में मारिए, सच्चे महल सुख पाए, इस युग में शोभा नाम की, बिन नावे शोभना होए, ए माया की शोभा चार दिहाड़े, जांदी बिलमना होए, जिन्नी नाम सारे से मुए मर जागे, हर जात न आयो दिष्टा माए सुमाए, एक आपे बक्स मलायन अन दिन नामे लाए, सच कुमारे सच रहे सच्चे सच सुमागे, बिन शब्दे सुनिए ना देखिए, जग बोला अन्ना परमाए, बिन नावे दुख पाए सी ना मिले तसे रजाए, जिन बाणी से चित लाया सेज निर्मल परमान, नानक नाम तिना कदे ना विसरे ते दर सच्चे जान, आसा महला तीजा शब्दो ही भगत जाप दे, जिनकी बाणी सच्ची होए, विचू आप गया नव मनिया सच मिलावा होए, हर हर नाम जन की पत होए, सब तिना का जन्म है तिन माने सब कोए, रहाओ हमे मेरा जात है अत क्रोध अवमान, सब मरे ता जात जाए ज्योति ज्योत मिले भगवान, पूरा सदगुर पेटे सबल जन्म हमारा, नाम न मेरे दे पाया परे अखुट पंडारा, आवे इस राशि के वापारिये जिन्ना नाम प्यारा, गुरमुख होवे सो तन पाए तिन अंतर शब्द विचारा, भगती सार ना जाननी मनमुख अहंकारी, तुरु आप खुआयन जुए बाजी हरी, बिन प्यारे भगत न होवई ना सुख होए शरीर, प्रेम पदार्थ पाईए गुर भगती मन तीर, जिसनु भगत कराए सो करे गुर शब्द विचार, हृदय एको नाम से होमे दुबदा मार, भगता की जद पत एको नाम है आपे लए सवार, सदा सरनाई तिसकी ज्यों पावे त्यों कार्ज सार, भगत निराली अलहादी जापे गुर विचार, नानक नाम

सतगुर प्रसाद मेरे मन हर त्यों लागी प्रीत। साध संग हर घर जपत निर्मल साची रीत। रखाओ दर्शन की प्यास कणी चितवत अनक प्रकार। तरो अनुग्रो पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार। मन परदेसी आया मिलो साध के संग। जिस वखर को चाहता सो पायो नम है रंग। जेते माया रंग रस बिनस जाए खिन माहे। भगत रते तेरे नाम से सुख पुंचे सब ठाए। सब जग चलतो पेकी है नेचल घर को नाओ। तर्म तराई सास्यो नेचल पा बैठाओ। मीत साजन सुत बंध पर को होत ना साथ। एक निवाहू राम नाम दीना का प्रभनाथ। चरण कमल भोयत पय लग सागर तरे होते हे। पेट्यो पूरा सदगुरु साचा प्रस्यो नेह। सा तेरे की जाचना विसरना सास गिरास। जो तु पावे सो फला तेरे पाने कार्ज रास। सुख सागर प्रीत मिले उपजे महा आनंद। कहो नानक सब दुख मिटे प्राभ पेटे परमानंद। आसा महला पंजवा बिरघड़े तर चौथा चंता की जत। एक ओंकार सदगुर प्रसाद पार ब्रह्म प्रसिमरिये प्यारे। दर्शन को बल जाओ जे सिमरत दुख बीसरे प्यारे। सो क्यों तजना जाए क्यों तन वेती संत पह प्यारे। प्रीतम दे मिलाए तुलसी गार बिखिया के भी।

तन फिरे मिला हुए स्वामी आप कृपा करे सेजा सुहावी संग तिरके सात सर अमृत परे कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानक हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाहो मुंद सहज सलोनड़िए एक प्रेम बेनंती राम मैं मंतन घर पावे प्रसंग मराती राम ता प्रेम राती हर बेनंती नाम हर के सुख वसे तो गुण पिछाणे ता प्रव जाने गुणे वस अवगुण नसे तुझ बाज एक तिल रह ना सक कह सुन ना तीजे नानका प्रयो प्रयो कर पुकारे रसन रस मन पीजे सखी हो सहेलड़ी हो मेरा फिर वणजारा राम हर नामो वणजड़िया रस मूल अपारा राम मोल अमोलो सज कर टोलो प्रभावे ता मुंद पली एक संग हर के करे रलिया हो पुकारी दरखली कारण कारण समरसरी तर आप कार्य सारे नानक नदरी तन सुहागन शब्द अब साधार हम कर साचा सोयलड़ा प्रभ आयड़े मीता राम रावे रंग रातड़िया मन लीड़ा दीता राम अपना मर दिया हर वर लिया क्यों पावे त्यों रावे तन मन पिरे आगे शब्द सुभागे कर अमृत फल पावे बुद्ध पाठ ना पाईए बहु चतराईए पाए मिले मन पाने नानक ठाकुर उम्मीद हमारे हम नहीं लोकाने।

मन बैरागी सुन मंडल कर पाया आद पुरख अपरंपर प्यारा सतगुर अलख लखाया आसन बैसन फिर नारायण इत मन राता विचारे नानक नाम रते बैरागी अनहद रोन चुनकारे तेत अगम पुरे ओ कित बिद जाइए राम सत संजमो सार गुणा गुर शब्द कमाइए राम सच शब्द कमाइए निज कर जाइए पाइए गुणी निधाना तित साखा मूल पत नहीं डाली सिर सबना प्रधाना जब तब कर कर संजम थाकी हट निग्रह नहीं पाइए नानक सहज मिले जग जीवन सदगुर बूझ बुझाइए गुर सागरो रतनागर तित रतन कणे रे राम कर मजनो सप्त सरे मन निर्मल मेरे राम निर्मल जल नहाए जा प्रभाए पंच मिले विचारे काम क्रोध कपट बिखिया ताज सच नाम उरतारे होमे लोभ लहर लभता के पाए दीन दयाला नानक गुर समान तीर्थ नहीं कोई साचे गुर गोपाला ओ बन बनो देख रही किरण देख सुभाया राम तिर पवन तुझे किया सब जगत सुभाया राम तेरा सब किया तू थिर थिया तू समान को नाही तू दाता सब जाचक तेरे तुद बिन के सालाही अण मंगया दान दीजे दाते तेरी भगत परे पंडारा राम नाम मुक्त ना कोई नानक कह विचारा आसा महला पहला मेरा मनो मेरा मन रता राम प्यारे राम सच साहेब आद पुरख अपरंपरो तारे राम अगम अगोच अपर अपार पार ब्रह्म प्रधानो आजुगा दी है पी होसी अवर झूठा सा मानो कर्म धर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाणे महर्ष नाम ते आई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सिखाई राम हो मैं ममता माया संग न जाई राम माता पित भाई सुच तराई संग न संपे नारे सायर की पुत्री पर घर त्यागी चरण तले विचारे आद पुरख चलत दिखाया जे देखा तै सोई नानक हर की भगत न छोड़ो सहजे होए सोई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच समाले राम अवगुण मेड़ चले गुण संगम न ले राम अवगुण परख करनी सारी दर सच्चे सचियारो आवन जावन ठाकर खाए गुरमुख तत्व विचारो साजन मीत सुजान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन परगसया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन रता राम मन तन रब रहया जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मेलाया सा सभा संता की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगतर ते बैरागी चूके मोह प्यासा नानक होमे मार पतीने विरले दास उदासा राग आसा महला पहला शांत कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू सबनी थाई जिथे हो जाई साचा सिरजनहार जियो सबना का दाता कर्म विधाता दुख बसारण हार जियो दुख बसारण हार स्वामी कीता जाका होवे कोड़ कुटंतर पापा केरे एक कड़ी में खोवे हंस से हंसा बग से बग्गा।

जाए स्वामी तिन फल तोट न आवे तिन जरा न मरना नरक ना परना जो हर नाम ते आवे हर हर करे से सूके नाही नानक पीड़ ना खाए जियो नाम लैन से सोह है तिन सुख पल होवे मन सेजन जाए जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला पहला शांत कर तीजा तू सुन हरना कालिया की वाड़गेरा ताराम बिखबल मीठा चार दिन फिर होवे ताता राम फिर होए ताता खरा माता ना बिन परतापे ओ जेव सायर दे लहरी बिजली जिवे चमके हर बाज राखा कोए नाही सोए तुझे बिसारिया सद कहे नानक चेत रे मन मरे हरना कालिया पावरा फूल पवंतिया दुख अत पारी राम मैं गुर पूछा अपना साचा बिचारी राम बिचार सगुर मुझे पूछया पवल बेली रातो सूरज चढ़या पिंड पड़या तेल तामन तातो जाऊ मग बादा खाए चोटा शब्द बिन बेता लिया सच कहे नानक चेतरे मन मरे पवरा कालिया मेरे जीड़या परदेसिया इत पवे जंजा ले राम साचा साय मन मस की फासे जम जा ले राम मछली विशुन्नी नैन रुन्नी जाल बदक पाया संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया परत कार चित लाए हरस्यो छोड़ मनो अंदेसिया सद कहे नानक चेतरे मन जीड़या परदेसिया नदियां माव शून्या मेला संजोगी राम जुग जुग मीठा विस परे ओ जाने जोगी राम कोई सहज जाने हर पछाणे सदगुरु जिन चेतया बिन नाम हर के परम फूले पचे मुद अचेतया हर ना भगत नारे साचा से अंत ताही रुनिया सद कहे नानक शब्द साचे मेल चिरी मछुनिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला तीजा शंत कर पहला हम करे साचा सोहला साचे शब्द सुहाया राम तान पिर मेल पया प्रभ आप मिलाया राम प्रभ आप मिलाया सच मन वसाया कामन सहजे माती गुर शब्द सी।

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलो जन्म सुबाया दूजड़े कामन परम पुली हर वरना पाए राम कामन गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम बिरथा जन्म गवाए मानमुख ए आणी औगुणवंती चूरे अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया ता तिर मिलिया हदूरे देख तिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाय नानक विण नावे कामण परम पुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए तिर संग कामण जानिया गुरमेल मिलाई राम अंतर शब्द मिली सहजे तबत बुझाई राम शब्द तबत बुझाई अंतर सांत आई सहजे हारस चाखिया मिल प्रीत में अपने सदा रंग माने सच्चे शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़ पंडित मुनी थाके एकी मुक्त न पाई नानक बिन भगती जग बौराना सच्चे शब्द मिलाई सा तन मन अंध पया हर जीव मेल प्यारे राम सा तन हर के रस रसी गुर के शब्द अपारे राम शब्द पारे मिले प्यारे सदा गुण सारे मन मसे छेद सुहावी जां तिर रावी मिल प्रीतम अवगुण नसे जित कर नाम हर सदा त्याई है सोहिलड़ा जुग चारे।

शांत करती जा। साजन मेरे प्रीतमो तुम सह की भगत करे हो, गुर सेवो सदा अपना नाम पदार्थ ले हो। भगत कर

अंतर कपट विकार है, तिना रोए क्या कीजे, हर करता सब कुछ जानदा, सिर रोग हाथ दीजे, जिना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है, हर भगत हर लीजे, आसा महला चौथा, जिन अंतर हर घर प्रीत है, तेजन सुगड़ सियाने राम राजे, जे बारों पोल चुक बोल दे, पी खरे हर पाने, हर संतानु होर थाओ नाही, हर मान निमाने, जन नानक नाम दीवान है, हर तान सताने, जिथे जाए बहे मेरा सदगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, गुर सिखी सो थान पालिया, ले तूर मुख लावा, गुर सिखा की काल थाए पई, जिन हर नाम ते आवा, जिन नानक सदगुर पूजया, तिन हर पूज करावा, गुर सिखा मन हर प्रीत है, हर नाम हर तेरी राम राजे, तर सेवे पूरा सदगुरु, भुख जाए लहे मेरी, गुर सिखा की भुख सब गई, तिन पिछे होर खाए कनेरी, जन नानक हर पुन बीजया, तिर तोट न आवे हर पुन केरी, गुर सिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सदगुरु डिठा राम राजे, कोई कर गल सुनावे हर नाम की, सो लगे गुर सिखा मन मिट्टा, हर दरगे गुर सिख पैनाई है, जिन्ना मेरा सतगुरु तुठा, जन नानक हर घर होया, हर घर मन उठा, आसा महला चौथा, जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु, तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे, तिस की तिसना पुख सब उतरे, जो हर नाम ते आवे, जो हर हर नाम ते आए दे, तिन जम नेड़ न आवे, जन नानक कौ हर कृपा कर, निद जपे हर नाम तरावे, जिन्नी गुरमुख नाम ते आया, तिना फिर बिघन न होई राम राजे, जिन्नी सतगुर पुरख मनाया, तिन पूजे सब कोई, जिन्नी सतगुर प्यारा सेवया, तिना सुख सद होई, जिना नानक सतगुर पेटिया, तिना मिलिया हर सोई, जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है, तिन हर रखण हारा राम राजे, तिन की निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा, जिन हर सेती मन मानिया, सब दुष्ट चक मारा, जन नानक नाम ते आया, हर रखण हारा, हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, अहंकारियां निंदकां पिठ दे ना।

प्रभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकी मिटे ना दाते जल संग राती माशली नान कर माते चातक जाचे बूंद ज्यों हर प्राण अधारा राम राजे मार्ख जाना सुप्रात मीत सब हूं ते प्यारा राम राजे सब हूं ते प्यारा पुरख निरारा ताकी गत नहीं जानिए हर सास ग्रास ना बिसरे कब हूं गुर शब्दी रंग माणिए प्रापुरख जग जीवनो संतरस पीमनो जब परम भो दुख डारा चातक जाचे बूंद ज्यो नान कर प्यारा मिले नारायण अपने मान ओर तो पूरा राम राजे ढाठी पीत परम की भेट गुर सूड़ा राम राजे पूर्ण गुर पाए पुरब लिखाए सबनद दीन दयाला आद मद अंत प्रसोई सुंदर गुर गोपाला सुख सहज आनंद कनेरे पद पामन साधु थूरा हर मेरे नारायण नानका मान ओरथो पूरा आसा मोहल्ला पंजवां शांत कर सेवां।

मय प्रभ करमय सुमरत अगत अपार निर्मल। सुनो स्वामी बिनु एहो पर जोड़ नानक दान मांगे।

बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज सुमानी सुख सोय लड़े हर गामन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सरसे हर नाम रहसे प्रभ आप कृपा तारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवसे आए सहज पाए सगल निध प्रा पागे बिनवंत नानक सरण।

खेते अंदर छुटिया को नानक सो नाहा फलगे फुलगे बपड़े पीतन विच स्वाहा पौड़ी आपी ने आप।

तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोष उपजय।

पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किय लिखिया आवन जान नानक मती मिथिया कर्म सच्चा नीसान पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू देत मिले सच ता तिनी सच कमाया सदगुर मिले सच पाया जिन कै हिरदे सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लभदी है पढ़ पढ़ परिए साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाईए पढ़ पढ़ गड्डिए खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आरजा पढ़िए जेते सास नानक लेख एक गल होर होमे चखना चाख महला पहला लिख लिख पढ़िया।

शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पेओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देओ मोहल्ला दूजा एक कृष्णं सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बाद देवस जे को जाने पेओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देओ मोहल्ला पहला कुंभे बद्दा जल रहे जल

हाथशुरी जगत का साई, नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण, मलेश तान ले पूजे प्राण, अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर कसे न जाना, देख चौका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कूड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, यो अन्न असाडा फिटे, तान फिटे फेड़ करेन, मन जूठे चुली परेन, कहो नानक सच त्याई है, सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी, चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेड़ चलाएंदा, आपे देव डेयाईया, आपे ही कर्म कराएंदा, वड़ो वड़ा वड़ मेदनी, सिर सिर तंदे लाएंदा, नदर उपठी जे करे, सुल्ताना कहो कराएंदा, दर मंगन पेखना पाएंदा, श्लोक महला पहला, जे मुहा का कर्म होए पितरी दे, अगे वत सन्यानी है, पितरी चोर करे, वड़गे हाथ दलाल के, मुस्पी एक करे, नानक अगे सो मिले, जे खट्टे काले दे महला पहला, जो जोरू सिर नावणी, आवे वारो वार, जूठे जूठा मुख बस, नित नित होए खुवार, सूचे ए ना आखी है, बैन जे पिंडा तोए, सूचे से ही नानका, जिन मन वसे आसोए पौड़ी, तुरे पुराने पौन वेग, हर रंगी हरम सवारिया, कोठे मंडप माड़िया,

जियो गुर चरण लाघम बिनवता ऊषित कहे जियो पाया कामन काज जग उपजे बिनसे कहो मोहे समझाया देव करो दया मोहे मार्ग लाभो

तपि सन्यासी बहु तीर्थ प्रमना लुंजत मुंजत मोन जटाकार अंत तऊ मरना ताते सेवियले राम ना रसना राम नाम।

हंस अकेला जाई। कहेत कबीर सुनो रे संतो, पै सागर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है,

ब्रह्म पाती बिसन डारी पूर संकर देओ, तीन देव परतख तोर है करे किसकी सेओ, पाखान गड़के मूर्त कीनी दे के छाती पाओ, जे ए मूर्त साची है।

फिर पछताना बिरध पायो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर सोख भोजंग बलयो अरहाओ, चूके सरवर पाल बंधावे, लूने खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण शीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बहे, जेवा बचन शुद्ध नहीं निगसे, ताबरे तर्म की आस करे,

मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन तिरपुन डसियले गुर प्रसाद दीठी रहाओ सरपनी सरपनी क्या कहो पाई जिन साज पछान्या तिन सरपनी खाई सरपनी ते आ

चर भय सचिरा मन जाई बार बैल गोन कर आई कहत कबीर जो इस पद बुझे राम रमत तिस सबके सूझे बाईस चौपद तथा पंच पदे आसा श्री कबीर जीओ के तिपदे अठ दो तुके सत।

की आस करे जम निहारे सासा। बारी गरी संसार कबीरा चेत टाल पासा आसा। तन रैनी मन पुनरप कर हो

चले हैं। पुरख एक पगवाना आसा, सास की दुखी ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डरो रे, सखी सहेली नंद गहेली, देवर के बिरह जरो रे। मेरी मत बौरी

करे लड़ाई माया सद मतवारी, बड़े पाई के जब संग होती तब हो ना प्यारी। कहत कबीर पंच को चगर जगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बाध्या, मैं राम रमत सुख पाया।

कीरा प्रगट पयो जब गुर गम दिया दिखाई आसा पहली क्रूप कुजात कुलखनी सौरे पेय बुरी आपकी स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी पली सरी मोई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ कौ कबीर जब लौरी आई बड़ी का सुहाग टरे हो लौरी संग पई।

ते अंतर नाही आसा। तुम चंदन हम इरंड बापरे संग तुम्हारे बसा। नीच रूह ते ऊज पए है गंध सुगंध निवासा। माधव सत्संगत शरण तुम्हारी हम अवगुण तुम्हें उपकारी। रहाओ तुम मगतूल सुपेद सुपील हम परे जस कीरा। सत्संगत मिल रही है माधो

देखे देखे सुने बोले, दौड़ो फिरत है रहाओ, जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोमन लगत है, मान बद क्रम रस कसे लोभाना, बिरस गया जाए कहूं समाना, कहे रविदास बाजी जग पाई, बाजी गर सौ मोहे प्रीत बने आई, आसा बाणी भगत तन्ने जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रामत फिरत बो जनम बेलाने, तन मन तन नहीं तीरे, लालच बिख काम लुभ दराता, मन बिसरे प्रभ हीरे, अरहाओ बिख बल मीड लगे मन बौरे, चार विचार ना जानिया, गुणते प्रीत बड़ी अनपांती, जन्म मरण फिर तानिया, जुगत जान नहीं रिदे निवासी, जलत जाल जम फंद परे, बिग पल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे, ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ध्यान मान मन एक मये, प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्त अगाने मुक्त पये, जोत समाए समानी जाके, असली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया तरणी तार, मिल जन संत समानिया, महला पंजवा, गोविंद गोविंद गोविंद संघ।

पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही पाखण कीट गुप्त होए रहता ता चो मार्ग नाही कह तन्ना पूर्ण ताहू को मातरे जी डराही आसा शेख फरीद जियो की बाणी एक ओंकार सदगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन से ही सचया जिन मन होर मुख होर ते कंडे कचया।

रीत है हर मेरी, हर मेरी कथा कहानी जी, गुर प्रसाद मेरा मन पीजे, एहा सेव बनी जियो रहाओ। हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप, हर मेरा पाई, हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त, हर मेरा साक अंत होए सगाई, हर बिन होर रास कूड़ी।

कीरत हमरी रह रास अरहाओ हर जन केवड पाग वडेरे जिन हर घर श्रद्धा घर प्यास हर घर नाम मिले त्रिवतास मिर संगत गुण परगास जिन हर हर हरस नाम न पाया ते पाघीन जम पास जो सदगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सदगुर संगत पाई तेन तुर मस्तक लिखया लिखास तन तन सत्संगत जित हरस पाया मिल नानक नाम परगास गूजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सत्संगत शब्द मन मोह जब गोविंद गोविंद त्याई है सबको दान दे प्रभ ओह मेरे पाई जना मुको गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संत जन सोह रहाओ सुख सागर हर भगत है गुरमत कौला रिद सिद्ध लागे पग ओह जन को राम नाम आधारा हर नाम जपत हर नामे सोह दुर्मत पाघीन मत फीके नाम सुनत आवे मन रोह कौआ काग को अमृत रस पाई है तृप्त विष्टा खाए मुख गोह अमृत सर सदगुर सतवादी जित नाते कौआ हंस हो है नानक तन तन वड्डे वडपागी जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है गुजरी महला चौथा हर जन ऊतम ऊतम बाणी मुख बोले पर उपकारे जो जन सुने श्रद्धा भगत सेती

नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवा चौप दे कर पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवे उद्दम जा आहर हर जीओ परया। सैल पत्थर मैं जन त्यो पाए ता कारजक आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत्संगत मिले से तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया तुके कष्ट हरिया। रहाओ जनन पिता लोग सुध बनता कोई न किस की तरिया। सिर

अंतर मैल न उतरे होमे बिन गुर बाजी गारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा थारी। और मदे को विरला सेवक होर सगले ब्योहारी हरहाओ सात वेद सिमर सब शुद्ध सब एका बात पुकारी। बिन गुर मुक्तन को उपावे मन वेखो कर बिचारी हर सरमजन कर इसनाना प्रम आए तरसारी। अनक सोज करे दिन राती बिन सदगुर अंधारी धावत धावत सब जगत आयो अब आए हर द्वारी। दुर्मत मेट बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी गुजरी महला।

आपन हाथ मतात सियानप काहू कामना आत जो अनरूप्यो ठाकुर मेरे होए रही ओ बात रहाओ देश कमा मन तन जोरन की मनसा बीचे निकसे सास लश्कर नेब खवा सब त्यागे जंप ऊठ सिदास होए अनन महर की दृढ़ता आपस को जानात जो अनिंद निंद कर छोड़ो

कल्याण आनंद रूप होई है। उबरे बाल गोपाल अरहाव मिल वरनारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवां माल पिता भाई सुध बंधप।

साध संग नानक दर्स पायो बिनस्यो सगल नेहोरा गूजरी मोहल्ला पंजवा आल जाल प्रमोत जावे प्रवसे तीरंग लाई मन को ए उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जे भेटे टूटे माया बंद बिसर ना कब हो जाई हराओ तर्क करत अनक बो पाती नीकी ए ठहराई मेर साधु हर

सर्पदपालक प्रावको सदा सलाहीरहाव सास सास्तिरा नाम समारो तुम ही को प्रवेयाही। नानक टेक पई करते की हो रास बिडानी लाही गुजरी महला पंजवा कर कृपा अपना दर्श दीजे जग गावो निस्यार भोर केस संग दास पग चारो यह मनोरथ मोर ठाकुर।

आओ साध संग उधार एहो मन आढ़ पैर आराध काम क्रोध अहंकार बिनस मिटे सगल उपाद अटल अछेद अपेद स्वामी सरणता की आओ चरण कमल आराध हृदय एक स्यों लिवलाओ पार ब्रह्म प्रादया तारी बग

आराध श्री तर सबल मूर्त करण कारण जोग गुण रमण सरमण अपार महिमा फिर ना होत बियोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण काड़ जा

पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा ना हो रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वडे भाग लिव लागी। कबल प्रकाश पए सत्संग दुरमत बुद्ध त्यागी। आठ पैर हर के गुण गावे सिमरे दीन दयाला। आप तरे संगत सब उधरे बिन से सगल जंजाला। चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ। शरण परयो नानकता तुमरी दे राख्यो हर हाथ। गुजरी अष्टपदियां महला पहला कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक नगरी पंच चोर बसियल बबरजत चोरी तावे। त्रेद समार रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावे। चेतो बाग देओ बनवाली राम हृदय जप माली। रहाओ उर्द मूल जिस साख तलाख चार बिरजित लागे। सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिवे जागे। पार जात कर आंगन मेरे।

नानक बिनव छोडो माया जाला, मन विचार एक लिव लागी, पुनरप जन्म न काला। सो गुरु सो सिख कथियले, सो वैद जे जाने रोगी। ते कारण काम ना तंदा नाही, तंदे गिर ही जोगी। काम क्रोध अहंकार तजियले, लोभ मोत सुमाया। मन तद अवगत त्याया, गुर प्रसाद दीप पाया। ज्ञान ध्यान सब दार कथियले, सेत वर्ण सब दूता। ब्रह्म कमर मदस्तास रसादं, जागत नाही सूता। महा गंभीर पत्र पाताला, नानक सर्ब जो आया। उपदेश गुरु मम पुने ना गर्भं,

जैसी पूख होए अभ्यंतर तू समरथ सच दे मनहार ऐ जी जब तब संजम सच आधार हर घर नाम दे सुख पाई है।

करे पिखिया कहो केते उदर भरण कहताई बिन घर भगत नाही सुख प्राणी बिन गुर गर्भ ना जाई ऐ जी काल सदा सिरी ऊपर ठंड जन्म जन्म वैराई साचे शब्द रते से बाचे सदगुर बूझ बुझाई गुर शरणाई जोए न सके दूत न सके संताई अवगत नाथ निरंजन राते निरपोस्यों लिवलाई ऐ जी ओ नाम दिड़ो नाम।

परे गुर शरण तुम्हारी, मैं अवर ना दूजी पाई। आप तब एको एक पुकारो, आद जुगा सिखाई। ऐ जी राखो पैज नाम अपने की, तुझगी स्यों बने आई। कर कृपा गुर दर्श दिखावो, हम में शब्द जलाई। ऐ जी क्या मांगो, किस रहे ना दिसै,

हम उत्तम नीच ना मध्यम हर शरणागत हर के लोग नामृते केवल बैरागी सोग बिजोग विसर्जित रोग भाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की सदगुर वाक हिरदे हर निर्मल ना जम कान न जम की बाकी रहाओ हर गुण रसन रवे प्रसंग जो तु पावे सहज हरी बिन हर नाम बिरथा जग जीवन हर बर नेफल मेक करी ऐजी खोटे ठौर नहीं कर बाहर निंदक गत नहीं काई रोज करे प्राभक्ष न मिट नित नित चढ़े सवाई ऐजी गुर की दात न मिट कोई मेरे ठाकुर आप देवाई निंदक नर काले।

मान मिर्त शुभ चिंतन गुर शब्द हारमण मत तत् ज्ञान कल्याण निधान हर नाम मन रमण चल चित विद प्रमा प्रमं जग मोह मगन हितं फिर नाम भगत दिड़ंग मती गुरवाक शब्द रतन परमात परमना चूकई जग जन्म ब्याद खपं अस्थान हर ने केवलं सतमती नाम तपं इहो जग मोहित व्याप्तं दुख अधक जन्म मरणं भज सर।

क्रोध हरन मद मोह दैन मुरार मन मकरंद जन्म मरने वार धरणी तर पत राख परमानंद जलत अनक तरंग माय गुर ज्ञान हरिद मंत छेद अंग बुद्ध करणा मैं चिंत मेट पुरख अनंत

वाहव करे सही जन सोने तिनको परजा पूजने आई। वाहो वाहो कर्म प्राप्त होवे नानक दर सच्चे सोभा पाई। पौड़ी बजक पाठ काया गढ़ पीतर कूड़क सत अभवानी। परम फूले नदर ना आवनी मानमुख अंध अज्ञानी। उपाय किते ना लभनी कर पेख थके पेखवानी। गुर शब्दी खोलाइयन हर नाम जपानी। हर जीव अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी। श्लोक महला तीजा वाहो वाहो करते हैं रैन सुख विहाए। वाहो वाहो करते हैं सदा आनंद होवे मेरी।

क्रोध लोभ छोड़िए, दीजे अगन जलाए, जीव दयानत जापिए, नानक साचा नाओ मोहल्ला पंजवां, सिमरत सिमरत प्रभ अपना।

बलाए मिटे अंदेसिया, इसका दर्शन देख जगत निहाल होए, जन के संग निहाल पापा मैल धोए, अमृत साचा नाव उथे जापिए, मन को होए संतोख भुखा त्रापिए, जिस कटवस्या नाव जिस बंधन काटिए, गुर प्रसाद किने विरले हर तन काटिए। श्लोक महला पंजवा, मन में चितवो चितवनी उदम करो उठ नीत, हर कीर्तन का आरो हर दियो नानक के मीत। महला पंजवा।

मद लोभ मोह दुष्ट बासना निवार राख लियो प्रभे अपने नानक सरबरे हार महला पंजवा खांदिया खांदिया मोह कठा पए नंदिया सब अंग नानक त्रिग तिना दा जीवया जिन

रंग रत्ते से जोन ना जोमना अंतर बार एक नैन अलोमना जिनी पिछाता हुक्म तिन कदे ना रोमना नाओ नानक बख्शीस मनमाए परोमना श्लोक महला पंजवा जीव दयाना चेत्यो मुआर लंदड़ो खाक नानक दुनिया संग गुदारिया सागत मूड ना पाक महला पंजवा जीवंदया हर चेत्या मरंदया हर रंग जन्म पदार्थ तारिया नानक साधु संग पौड़ी आद जुगा दिया रखण वालिया सच नाम करतार सच पसारिया ऊना कही न होए घटे कड़ सारिया मेरवान समरथ आपे ही कालिया जिन मन मुठा आप

मार्ग कैसे जीवे रग राई, तन ना बोना सब तजो है कबीर। हर का नाम लिख लियो शरीर रखाओ, जब लग तागा बाहो बेही, तब लग बिसरे राम स्नेही, ओछी मत मेरी जात जुलाह। हर का नाम लयो मैं लाह, कहत कबीर।

कहे किन बूझिए, फरमैया आकुल री बाई हरहाओ, क्यों आका से पंखी अलो खोज निरख्यो ना जाई, ज्यों जल माजे माचलो मार्ग पेखनो ना जाई, ज्यों आका से कड़ू अलो मृत सिना परया, नामे चे स्वामी बीठलो जिन तीन जरया, गुजरी श्री रविदास जी के पदे कर तीजा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, दूता बशरे थनो बिटारे हो, फूल पावर जल मीन बकारे हो, माई गोविंद पूजा कहां ले चिरावो, आवर ना फूल अनूप ना पावो रखाओ, मैला गर बेरे गए कोयंगा, बेख अमृत बसे एक संगा, तूब दीप नहीं बेदे बसा, कैसे पूज करे तेरी दासा।

पूजेगा। दह दिस खोजत हम फिरे मेरे लाल जियो, हर पायड़ा कर आए राम, हर मंदिर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो, हर किसमय रहा समाए राम, सर्वे सुमाना आप स्वामी गुरमुख प्रगट होया, मिटिया अंधेरा दुख नाठा आम्यो हर हस चोया, जहां देखा तहां स्वामी पार ब्रह्म सब ठाए, जन कहे नानक सतगुर मिलाया हर पायड़ा कर आए। अराग बिहागड़ा महला पंजवां,

निर्गुण निबाणी अनाथ बिनव मिलो प्रभ कृपा निधे। प्रम पीत खोइये सहज सोइये प्रभ पलक पेखत नव निधे। गृह लाल आवे महल पावे मिल संग मंगल गाइये। नाक पैम पै संत सरणी मोहे दर्स दिखाइये। संतन कै प्रसाद हर घर पाया राम। इश पुनी मन शांत तप्त बुझाया राम। सबला सो दिनस रहने सुहावी।

बिनवंत नांग सदा निर्मल सच शब्द रोण चुनकारु सुन वडभागिया हर अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी तिस हृदय सुमाणी राम अकथ कहानी तिनी।

तज ना जाई प्रप्रीत मन तन पानी बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत भय किस कहन न जाई राम जिस ते उपजड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया जल थल मईल ए करव्या नह दूजा दृष्टाया बण त्रैण तिरपवन पूर पूरन कीमत कहन न जाई बिनवंत नानक आप जाने जिन ए बणत बनाई बिहागड़ा महला पंजवा खोजत संत फिरे प्रभ प्राण आधारे राम तान तनखीन फया बिन मिलत प्यारे राम प्रा मिलो प्यारे मया तारे कर दया।

दुख हरन कृपा करन मोहन कलकले से पंजना शरण तेई रख लिहो मेरी सर्व वै निरंजना सुनत पेखत संग सब कै प्रभ नेर हू ते नेरे अरदास नानक।

देश वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊने कामा पुत्र कलतर ना संग शोभा हस्त कोर विकारी बिनवंत नानक बिन सा संगम सब मिथया संसारी। राजन क्यों सोया तू नींद परे जाग।

चौथा बिन सदगुरु सेवे जी के बंधना जेते कर्म कमावे बिन सदगुरु सेवे ठवर ना पावही मर जम्मे आवे जावे बिन सदगुरु सेवे फिक्का बोलना नाम ना बसे मन आए नानक बिन सदगुरु सेवे जमपुर बद्दे मारी है मुए काले उठ जावे महला तीजा एक सदगुरु की

आपे चार साल आप गए पांदा, आपे चाटड़े पढ़न को आने, आपे पिता माता है आपे, आपे बालक करे से आने, एक थे पढ़ बुझे सब आपे, एक थे आपे करे ए आने, एक न अंदर मैल बुलाए जा आप तेरे मन सच्चे पाने, जिन्ना आपे गुरमुख देव डियाई ते जन सच्ची दरगह जाने। सलोक मर्दाना पहला कल कलवाली काम माद मनुआ पीवनहार, क्रोध कटोरी मोहे परी पी लावा अहंकार, मजलिस कूड़े लब की पी पी हुए खुवार, करनी लहान सत गुड़ सच सरा कर सार, गुणमंडे कर सील क्यो सर्व मास आहार, गुरमुख पाइये नानका खादे जाए विकार, मर्दाना पहला काया लहान आव मद मजल तृष्णा तात, मनसा कटोरी कूड़ परी पीला।

राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। अगमे गोचर अत वड्डा, अतुल न तुल आ जाए। कीमत कने न पाई, इते न ले आ जाए। गुर कै शब्द पेदया, इन बिद वसया मन आए। नानक आप अमयोग है।

एमान यो तन नाम है जित सदा सदा सुख होए तोटा मूल न आवई लाहा सदगी होए खाद खर्चे तोट न आवई सदा सदा ओ दे सहसा मूल न होवई हांत कदे न होए नानक गुरमुख पाईए जा को नदर करे पौड़ी आपे सब कट अंदर आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जहर जो शक्ति गोबार कर वर्त्या सुनहर उथे वेद पुराण ना सास्ता आपे हार नर हर बैठा ताड़ी लाए आप सब दूगी बाहर अपनी मित आप जानदा।

हिंदू मूले पूले अखुट्टी जाही, नारद कया से पूज कराही, अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुग्ध गवार, वे जा आव डुबे तुम कहां तरनहार पौड़ी, सब क्यों तेरे वस है तू सच्चा साहो, भगतर ते रंग एक कै पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर राज्य राज जन खाहो, सब पदार्थ पाइयन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो, श्लोक महला तीजा सब किस हुक्मे आवंदा सब किस हुक्मे जाए, जे को मूर्ख आपो जाने अंधा अंध कुमाए, नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनु कृपा करे रजाए, महला तीजा सो जोगी जुगत सो पाए, जिसनु गुरमुख नाम प्राप्त होए, ते जोगी की नगरी सब को वस पेखी जोग न होए, नानक ऐसा विरला को जोगी जिस कट प्रगट होए पौड़ी, आपे जंत उपायन आपे आधार, आपे सूखम पालिए आपे पासार, आप एकाती होए रहे आपे वड़ परवार, नानक मंगे दान हर संतारे नार, होर दा तार ना सुजई।

मत सो देखा सोए तय साहब की बात जे आखे कहो नान क्या दीजे शीश वड़े कर बैसन दीजे विण सिर सेव करीजे।

निर्मल नाम से मन आए पर में भूला फिरे संसार मर जन में जम करे खुवार नानक से बड़ भागी जिन घर नाम के आया गुर प्रसादी मन नमसाया वढ़ांस महला तीजा होमे नावे नार विरोध है दोना वसे एक ठाए होमे जो सेवा ना हो वही कामन बिरथा जाए हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए हुक्म मने ता हर मिले ता विचो होमे जाए रखाओ होमे सब शरीर है होमे उपत होए होमे वड़ा गुबार है होमे विच बुझ न सके कोए होमे विच भगत न हो वही हुक्म ना बुझिया जाए होमे विच जियो बंद है नाम ना वसे मन आए नानक सतगुर मिले होमे गई ता सच वसया मन आए सच कमावे सच रहे सच्चे सेव समाए वढ़ांस महला चौथा कार पहला एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सेज एक को प्रभ ठाकुर गुरमुख हर रावे सुख सागर।

नेतन सेव करी हर जन की, जो हर घर कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सदगुर पूरा, नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे, जित मिल हर नाम त्यावा। गुर सदगुर पासो हर गोष्ठ पूछा, कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के, मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित वेला विसरे, मेरा स्वामी

सो हर घर सदा संभाले, सो हर घर नाम सदा सदा संभाले, जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया, नानक हर जान हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया, वढ़हंस महला।

कोट कोट लख तावे एक तिल ताका मैल न पावे सुहावी कौन सो वेला जित प्रा मेला रहाओ लाख भगत जा को आराध लाख पीसर तब की साध।

ब्राह्मणा सभ्यो पाइगन आप आपे नजर करे। कौड़ा कोई ना मांगे, मीठा सा मांगे, सब कोई मीठा मंग देखे। खसम भावे सो करे, इस पुन दान अनेक करनी, नाम तुल ना समसरे। नानका जिन नाम मिलया,

तेरी चाल सुहावी मदराड़ी बाणी कोकन कोकला तरल जवानी तरला जवानी आप पानी इस मन की पूरी है सारंग जो भगत तरे ठिम ठिम आप संधूर है श्री रंग राती फिरे माती उदक गंगा वाणी बिनवंत नानक दास वरका तेरी चाल सुहावी मदराड़ी बाणी।

गुण संग्रह अवगुण विकण आपे आप शान गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे सदरस तीजे नानक घर की भगत निराली गुरमुख विरले कीजे गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने कर अंदर रस पुंच तू लाहा लय परथाए राम लाहा परथाए घर मन नमसाए।

बीज मन अंदर सत्य शब्द सुखाए, हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वड़पा गो राम। गुरमति मन कर वसया सत्य शब्द बैरागो राम, मुख मस्तक भागो सत बैरागो साचर ते विचारी। ना बिना सब जग बौराना सब देखो में मारी, साचे शब्द लाग मत उपजे गुरमुख नाम सुहागो। नानक शब्द मिले पो पंजन हर आवे मस्तक भागो, खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड़िया ई राम। गुरमती हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम, हुक्म मिलाई सह समाई गुर का शब्द अपारा। सच्ची वड़ियाई गुर ते पाई सच सवारण हारा, पाओ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई। कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर, हुक्मे रहा सुनाई वढ़ांस महला तीजा। मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो, अपने कर तू सुख बस होए न सके जम काल जियो। काल जाल जम जोए न सके साचे शब्द लिवलाए, सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रखाए। दूजे पाए परम विगुति मन मुकमोही जम काल, कहे नानक सुन मन मेरे तू सदा सच समाल। मन मेरे अंतर तेरे निधान गए बाहर वस्त ना पाल, जो पावे सो पूछ तू गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर घर नाम सिखाई, मनमुख अंदले ज्ञान में गुणे दूजे पाए खुवाई। बिन नावे को छूटे नाही साबादी जमकाल, नानक अंतर तेरे निधान है तू बार वस्त ना पाल। मन मेरे जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा, सदगुरु सेव ने अपना अंतर शब्द अपारा। अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौन दपाई, मन कुमाया मोवे आपे दू संतापे दूजे पद गवाई। होमे मार सच शब्द सुमाने सचर ते अदकाई, नानक मानस जन्म दुलंब है सदगुर बूझ बुझाई। मन मेरे सदगुर सेवन अपना से जन्म वड़ भागी राम, जो मन

सदगुर देख सरसे राम, हर नामो हर नाम दृढ़ाय, जप हर हर नाम विगसे राम, जप हर हर नाम कमल प्रगसे, हर नाम नवंग निंद पाई, हमे रोग गया दुख लत, हर सहज समाध लगाई, हर नाम वडाई सतगुर ते पाई, सुख सतगुर देव मन परसे, हो जीवा सतगुर देख सरसे, कोई आन मिलावे, मेरा सतगुर पूरा राम, हो मन तन देवा, इस काट श्रीरा राम, हो मन तन काट काट देई, जो सतगुर

करो सुख दाते देव सदगुरु चरण गम तूरा, कोई आन कोई आन मिलावे मेरा सदगुर पूरा। गुर जेवड़ दाता मैं अवर न कोई राम, हर दानो हर दान देवे हर पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम जिनी आराध्या तिनका दुख परम पौ पागा, सेवक पाए मिले वड पागी जिन गुर चरणी मन लागा। कहो नानक हर आप मिलाए मिल सदगुर पुरख सुख होई, गुर जेवड़ दाता मैं अवर ना कोई। वढ़ांस महला चौथा हाँ गुरबिन खरी निमानी राम। जग जीवन दाता गुर मेल सुमानी राम, सदगुर मेल घर नाम सुमानी जप हर घर नाम तिहाया। जिस कारण हौ ढूंढ ढूंढेंदी सो सज्जन हर कर पाया, एक दृष्ट हर एको जाता हर आत्म राम पछाणी। हौ गुरबिन खरी निमाणी, जिन्ना सदगुर जिन सदगुर पाया तिन हर प्रा मेल मिलाए राम। तिन चरण सरेव हम लागे तिनके पाए राम, हर घर चरण सरेवे तिनके जिन सदगुर पुरख प्रत्याया। तू वड़दाता अंतर जामी मेरी सरदा पूर हर राया, गुरसिख मेल मेरी सरदा पूरी आनंदन राम गुण गाए। जिन सदगुर पाया तिन हर प्रा मेल मिलाए, हों वारी गुरसिख मीत प्यारे राम। हर नामो हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नाम अधारे राम, हर घर नाम मेरा प्राण सकाई तिस बिन कड़ी निमख नहीं जीवा। हर घर कृपा करे सुखदाता गुरमुखे अमृत पीवा, हर आपे सरदा लाए मिलाए हर आपे आप सवारे। हों वारी गुरसिख मीत प्यारे, हर आपे पुरख निरंजन सोई राम। हर आपे मिले करे सोई राम, जो हर प्रा भावे सोई होवे अवर न करना जाई। बहुत सियाण पलया न जाई तर थाके सबच तराई, गुर प्रसाद जन नानक देखया मैं हर बिन अवर न कोई। हर आपे पुरख निरंजन सोई, वढ़ांस महला चौथा हर सदगुर मेल, हर सदगुर चरण हम पाया राम। तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम, गुर ज्ञान अंजन सदगुरु पाया अज्ञान अंधेर बिना से। सदगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास गिरासे, जिन कौ हर प्रा कृपा थारी ते सदगुर सेवा लाया। हर सदगुर मेल हर सदगुर चरण हम पाया, मेरा सदगुर प्यारा मैं गुरबिन रहन ना जाई राम। हर नामो हर नाम देवे मेरा अंत सकाई राम, हर घर नाम मेरा अंत सकाई गुर सदगुर नाम दृढ़ाया। जिथे पुत कलत्तर कोई बेली नाही तिथे हर घर नाम छिड़ाया, तन तन सदगुर पुरख निरंजन जित मिल घर नाम त्याई। मेरा सदगुर प्यारा मैं गुरबिन रहन ना जाई, मेरा सदगुर प्यारा मैं गुरबिन रहन ना जाई। जिन्नी दर्शन सदगुर पुरख न पाया राम, तन नेपल जन्म सब बिरथा गवाया राम। नेपल जन्म तिन बिरथा गवाया ते सागत मोए मर चूरे, कर होंदे रतन पदार्थ भूखे भागीन घर दूरे। हर घर तिनका दर्शना करियो जिनी हर घर नाम ना त्याया, जिन्नी दर्शन सदगुर पुरख ना पाया। हम चातरक दीन हर पास बेनती राम, गुर मेल मेरा प्यारा हम सदगुर करे भगती राम।
हर घर सतगुर करे भगती या हर प्रा कृपा तारे। मैं गुर बिन अवर न कोई बेली, गुर सतगुर प्राण हमारे। कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया, हर घर नाम घर सती। हम चातरक दीन, हर पास बेनंती। वढ़ंस महला चौथा, हर कृपा कर। सतगुर मेल सुखदाता राम, हम पूछे सतगुर पास घर बाता राम। सतगुर पास घर बाद पूछे, जिन नाम पदार्थ पाया। पाए लगे नित करे बेनंती, गुर सतगुर पंथ बताया। सोई भगत दुख सुख संत कर जाने, हर घर नाम घर राता। हर कृपा कर, गुर सतगुर मेल सुखदाता। सुन गुरमुख नाम, सा बिलसे होमे पापा राम।